FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। समाचार के तुरंत बाद सुनिएगा आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: वंदनवार

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कभी कमजोर नहीं पड़ें, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, आपके भीतर अनंत शक्ति है। आइए सुने भक्ति संगीत।

बातों में बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में मुख वो है जो

ये विविध भारती है, झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 212, 6:45 और संध्या 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिएगा श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की। श्रोताओ, आज इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी आप सुनेंगे। सात बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर होगा कार्यक्रम त्रिवेणी। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

दिन में 10 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिएगा कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग। दिन में 11 बजे विविधा में सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक रंग का संपादित अंश। सहभाग डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नरोत्तम बेन, ममता वर्मा। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा सदाबहार नगमे। 3 बजे होगा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग में आप सुनेंगे नाटक पोस्टमैन का दूसरा भाग। के

भूपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद किया है पीएस कृष्णा स्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी। शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 5 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन। 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा। आज महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल की शौर्य गाथा आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 7:45 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम साज और आवाज। 8:00 हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा झलकी कुत्ते के पिल्ले, लेखक और निर्देशक गुरमीत रामल मीत। 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। 9:00 होगा कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर सुनिएगा आज के फनकार और 10:00 आप सुनेंगे छाया गीत। 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। झरोखा में ये थी जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये विविध भारती है, आइए सुने श्री रामचरित मानस का भाग 212।

चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधी न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृप्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषाद राज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवक गण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहाँ आए हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। इस श्रृंखला की आज सातवीं कड़ी।
1: रविंद्र जी, अब तक हमने तीन ताल, रूपक, एक ताल और झपताल, शास्त्रीय संगीत में उपयोग में लाए जाने वाले इन तालों की बात की
2: जी।
1: इस पर आधारित फिल्मों में जो गीत हुए हैं उनकी चर्चा की। अब थोड़ी चर्चा ललित संगीत में जो उपयोग किए जाते हैं ताल और उन पर आधारित जो फिल्मी गाने हैं उनकी बात करते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे आप?
2: अभी ये जो है, जैसे तीन ताल, रूपक, एक ताल, झपताल
1: जी,
2: ये ख्याल गायन में इनका प्रयोग करते हैं
1: जी,
2: संगत के लिए, और उसमें विलंबित भी होता है, मध्यलय भी होती है और द्रुतलय भी होती है
1: जी।
2: अभी शास्त्रीय संगीत के अलावा हमारे भारतीय संगीत में उपशास्त्रीय संगीत है, तो उपशास्त्रीय संगीत जो है वो उसकी भी काफ़ी बड़ी विधा है और उसमें भी कई महान कलाकार जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है
1: जी।
2: तो ये जो उपशास्त्रीय संगीत है इसमें ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, बारामासा ऐसे कई सारे प्रकार है
1: जी।
2: तो ये जो प्रकार है इसमें उपयोग में लाए जाने वाले जो ताल है
1: जी,
2: उसमें प्रमुखता है कहरवा और दादरा। तो कहरवा जो है वो कहरवा फिल्मी गीतों में तो काफ़ी गीतों में वो आया है, मतलब अनगिनत गीत है जिसमें कहरवा बजाया।

0: गया है, और कहरवा का एक अपना खुद का जो विशेषता है, कहरवा की विशेषता, मतलब जैसे अब हम लोग अगर तीन ताल का उदाहरण लेते हैं तो तीन ताल है 16 मात्रा,
1: जी
0: मतलब सम में आने के लिए हमको 16वीं मात्रा तक इंतज़ार करना होगा।
1: जी
0: कहरवा है 4 मात्रा, तो 4 मात्रा धागे न ती न कधी न, तो ये हो गया फिर आसान। तो इसको इसलिए हम लोग ललित संगीत इसलिए कहते हैं कि वो उसमें सुलभता है, आसानी है, तो सुलभता आसानी होने की वजह से

0: चार मात्रा धागे न तीन अक धीन, तो ये हो गया फिर आसान। तो इसको इसलिए हम लोग ललित संगीत इसलिए कहते हैं कि वो उसमें सुलभता है, आसानी है। तो सुलभता आसानी होने की वजह से कहरवा में अनगिनत गीतों का निर्माण हुआ है।
1: और अलग अलग गीतों में रविंद्र जी कहरवा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं।
0: हाँ, कई सारे रूप है
1: जी।
0: तो इसमें हम लोग जो शुरू में बात कर रहे थे कि पैटर्न के बारे में, पैटर्न होते हैं
1: जी,
0: तो अभी कहरवा जो है वो केवल ये मूल
1: ये उसका कहरवा
0: है, धागे नती ना कदीना
1: जी।
0: अब वो जो कहरवा है वो गीतों के साथ में कई रूप बदल बदल के आया है, और हर गीत में हमको एक नया कहरवा का रूप देखने को मिलता है
1: जी।
0: वो पैटर्न की वजह से है। तो ये पैटर्न जो होते हैं वो पैटर्न तो गीतों के अनुसार कई सारे हैं, एक हाथ दो मैं आपको अभी उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ
1: जी।

0: ऐसे केरवा के कई सारे रूप
1: क्या
0: हैं
1: बात है
0: और इन सारे रूपों में हमको गीत सुनने को मिलते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: हम सुनते हैं गीत तो मतलब ऐसा कहने को मन नहीं करता कि ये केरवा बज रहा है।
1: हाँ हाँ
0: नहीं
1: हाँ
0: नहीं नहीं नहीं वो तो उसका इतना सुंदर सुंदर रूप देखने को मिलता है कि बस उसको केवल सुनते जाए, वो उसका वो कोई नाम ना दे हम
1: जी जी
0: लोग।
1: तो ये हर अलग ढंग में जो कहरवा बजा है और उसका अलग रूप हमारे सामने आता है,
0: जी
1: तो ऐसे दो गीतों की झलक सुन लेते हैं।
0: जी हाँ
1: कुदरत फिल्म का गीत है तूने ओ रंगीले क्या जादू किया, लता जी के स्वर में। और दूसरा गाना है मिलन फिल्म का, सावन का महीना पवन करे शोर। इन दोनों गीतों में कहरवा अलग अलग ढंग से बज रहा है, तो ये जो इसकी खूबसूरती है, ये जो निरालापन है, सुनते हैं इन दोनों गीतों की झलक।

0: गरबा की विविधता जो देखने को मिली इन गीतों की झलक में श्रोताओं, इसके बाद रविंद्र जी से पूछना चाहेंगे कि कहरवा ताल का कोई और भी प्रकार है जिसे फिल्म संगीत में प्रयोग में लाया गया है?
1: हाँ, फिल्मी गीतों में लाया गया एक कहरवा का प्रकार है जिसको हम लोग महाराष्ट्र में धुमारी ताल कहते हैं। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश या अन्य भागों में इसको कहरवा ही कहते हैं। तो कहरवा का ये जो आविष्कार है ये इसकी महाराष्ट्र की थोड़ी सी जो पार्श्वभूमि है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने कहा कि महाराष्ट्र में नाट्य संगीत की परंपरा थी,
0: जी जी,
1: तो वैसे ही महाराष्ट्र में कीर्तन की एक परंपरा रही है, दीर्घ परंपरा है ये, बहुत बड़ी परंपरा चलती आई। तो ये कीर्तन जो होता है इसमें एक धुमारी ताल का प्रयोग होता है। तो वो जो प्रयोग है, तो कीर्तन में अक्सर जो कीर्तन करने वाले हैं वो

0: ये कीर्तन परंपरा में इस तरह का ये ताल
1: जी
0: बजाया गया, तो उसका ही सुगम स्वरूप जो है, हाँ, ललित स्वरूप वो

0: वाह,
1: ये कहरवा का ही एक अंग आ गया इसमें। तो इस अंग को लेकर भी फिल्मों में गीत बनाए गए हैं और वो काफ़ी अच्छे गीत है
0: जी,
1: लोगों ने बहुत पसंद किए हुए गीत है।
0: तो रविंद्र जी, ये जो एक कहरवा का रूप है जिसे धुमाड़ी कहा जाता है, क्या फिल्म संगीत में इसका उपयोग हुआ है?
1: हाँ बिल्कुल हुआ है, और मतलब वो उदाहरण बताने के लिए ही मैंने अभी जी, इस जी। उस ताल का जिक्र किया।
0: हाँ।
1: कि धुमाड़ी का प्रयोग जो है वो आप सब लोग जानते हैं, गाना अजहुन आए बालमा
0: सावन बीता
1: सावन जाए। बीता जाए, तो इसमें जो धुमाड़ी जो हम लोग महाराष्ट्र में जिसे कहते हैं,
0: हाँ,
1: वो उसमें सुनने को मिलता है।
0: क्या बात है, सांझ और सवेरा फिल्म का बड़ा ही सुंदर गीत है, राग मधुवंती पर आधारित। तो सुनते हैं इस रचना को संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला की ये थी 7वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष

आप सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।

संगीत था। विविध भारती से श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

बुलो सिरानी की तर्ज थी शिवन रिजवी के बोल आपने सुने। इस्माइल आज़ाद कव्वाल और साथियों की आवाज़ों में अल हिलाल फिल्म की ये कव्वाली थी।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में शमशाद बेगम की आवाज़ थी। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे 12 o'clock फिल्म से।
1: T-A-T, cat. Cat माने बिल्ली।
2: R-A-T, rat. Rat माने चूहा।

0: G-O-A-T goat, goat माने बकरी, L-I-O-N lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: Hey, mad, mad.

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, रवि का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

आज की इस ताजगी भरी सुबह में आप सभी के चेहरे पर मुस्कान रहे, हर एक दुख से आज आप सब दूर रहें, महक उठे आज आप सबकी जिंदगी, ऐसा शुभ दिन आप सभी का आज रहे। जी हाँ, इसी मंगल कामना के साथ मैं रागिनी आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है, हम सबका आदर्श वाक्य होना चाहिए श्रम, श्रद्धा और शक्ति, जिसका अर्थ है कि निष्ठा से किया गया परिश्रम ही हमें भविष्य में सच्ची शक्ति देगा और हम शांतिपूर्ण तरीके से विकास कर पाएंगे। श्रोताओं, आज 7 जून है, तो आइए एक नज़र डालते हैं 7 जून के महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो बता दें आपको कि आज की ही वो तारीख है जब 1539 में चौसा की लड़ाई में हमारे रोहतास जिला के सासाराम के शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1893 में 7 जून को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग में ट्रेन से निकाले जाने के बाद पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था।

7 जून को 1975 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में शुरू हुआ, जिसका पहला वनडे मैच लॉर्ड्स में यानी इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया। 1989 में 7 जून को भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। 7 जून को 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाले 4% वैट को पूरी तरह से समाप्त घोषित किया। और इसी के साथ अब आइए आपको बता दें कि हमारे भारत देश के मशहूर टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने 7 जून को 1997 में ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनने का खिताब हासिल किया। और अब थोड़ी सी जानकारी 7 जून को जन्मे चर्चित व्यक्तियों के बारे में। तो आपको बता दें कि 1927 ईस्वी में आज ही के दिन यानी कि 7 जून को भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका निर्मला देवी जी का जन्म हुआ। निर्मला देवी जी के ही सुपुत्र हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बेहद ही मशहूर अभिनेता गोविंदा। जी हाँ, इनकी माँ थी और भारत की मशहूर शास्त्रीय गायिका थी निर्मला देवी जी। 1974 में 7 जून को भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का भी जन्म हुआ। 1914 में आज ही के दिन यानी कि 7 जून को प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का भी जन्म हुआ। और अब बात करते हैं 7 जून को इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। बता दें आपको कि 1631 में आज ही के दिन मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन हो गया। और हम आपको श्रोताओं बताना चाहते हैं कि भारत का जो सबसे चर्चित ऐतिहासिक धरोहर है ताजमहल, वो शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ही बनवाया। 2011 में आज ही के दिन भारत के नृत्य गुरु नटराज रामकृष्ण का भी निधन हो गया। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती का निधन भी 7 जून को 2002 में हुआ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर रहीं सहर अली लतीफ़, इनका भी निधन 2021 में हार्ट अटैक यानी कार्डियक अरेस्ट पड़ने के कारण हो गया था। श्रोताओं, 7 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करना और खाद्य जनित बीमारियों से रोकना है। ये थी थोड़ी सी जानकारी आज के दिन के इतिहास के बारे में। और अब चलिए सुनते हैं कार्यक्रम में ये भक्ति संगीत। भक्ति रचना नीति मोहन की आवाज़ में है, लिखा है बसंत चौधरी ने, संगीतकार हैं श्रेयस पुराणिक और फिल्म है शिव शंकरा।

नीति मोहन की आवाज़ थी और आप अभी सुन रहे थे ये भक्ति रचना शिव शंकरा फिल्म से। और श्रोताओं, अब आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। अठारह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा एवं अमर शहीद निशान सिंह की शहादत दिवस पर आयोजित कल की श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने उनके बलिदान को देशभक्ति, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। जी हां, रोहतास जिला के सासाराम में कल निशान सिंह का शहादत दिवस मना, जिस पर वक्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बारे में प्रेरणादायी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि बाबू निशान सिंह का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। उनके जैसे वीरों के बलिदान की वजह से ही आज भारत स्वतंत्र है। ऐसे वीर सपूतों की वजह से देश को जो स्वतंत्रता मिली है, उसकी रक्षा हमें अक्षुण्ण रहकर करनी है। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सासाराम विधायक ने कहा कि शहीद निशान सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया, वह आज भी प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन से युवाओं को देश हित को सर्वोपरि रखने की सीख मिलती है। साथ ही करघर विधायक ने कहा कि शहीद निशान सिंह के जीवन का जो संकल्प रहा, उसे हमें आज समझने की ज़रूरत है और उनके जैसा

बनने का प्रयास भी करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे महान सेनानियों की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके सपनों का भारत बनकर तैयार होगा। अन्य वक्ताओं ने भी शहीद निशान सिंह के बलिदान के बारे में आने वाली पीढ़ियों को बातें बताईं और प्रेरणा स्रोत उनके जीवन को बताया। देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना ही हम सब युवाओं का कर्तव्य होना चाहिए, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए होगा नया पोर्टल। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने खेल छात्रवृत्ति योजना को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए इस वर्ष एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया है। चयनित खिलाड़ियों को अब खेल किट, हवाई यात्रा, चिकित्सा, पोषण, आवास और अन्य मदों में सहायता प्राप्त करने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि पिछले वर्ष खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यालय आना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पोर्टल के माध्यम से ही खिलाड़ी आवेदन कर सकेंगे। खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयनित खिलाड़ियों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी। रोहतास और कैमूर जिले में साइंस शिक्षकों को अब मिलेगा प्रशिक्षण। जी हां, इंटीग्रेटेड मैथ और साइंस लैब जिस तरह से निजी स्कूलों में किए जाते हैं, उसी तरह सरकारी स्कूलों में भी अब किए जाएंगे और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी लैब में गणित एवं विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल कर सकेंगे। रोहतास और कैमूर जिले में अब सरकारी स्कूलों के लैब में विज्ञान एवं गणित से संबंधित मॉडल भी रखे जाएंगे। सरकार ने लैब स्थापित करने, उसके मेंटेनेंस तथा आवश्यक मानव संसाधन बहाल कर संचालन करने की जिम्मेदारी अब निजी एजेंसियों को दे दी है। साइंस लैब में विभिन्न मॉडलों के माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग, खगोलीय घटनाएं, रॉकेट लॉन्चर, लीवर एवं पुली सिस्टम, प्रकाश, शारीरिक तंत्र, चुंबकीय गुण, भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान के विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। कैमूर जिला मुख्यालय के सटे दुमदुम गांव में खेत बचाओ चौपाल कल लगाया गया। उसमें मिट्टी की सेहत के अनुकूल रासायनिक उर्वरक के उपयोग की बात कही गई। कृषि विज्ञान केंद्र कैमूर की ओर से खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम कल जिला में चलाया गया। अभियान में कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव में जाकर मिट्टी की जाँच किए, इनमें मौजूद पोषक तत्वों के आंकड़े तैयार किए और इसी के अनुकूल उर्वरकों के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया। आज कैमूर समाहरणालय में साइकिल रैली का आयोजन। जी हां, विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन आज रविवार को कैमूर समाहरणालय में किया जा रहा है। यह रैली प्रातः 7 बजे समाहरणालय कैमूर से जगजीवन स्टेडियम भभुआ तक निकाली जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान कैमूर ने कहा कि सभी प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक से अनुरोध है कि निर्धारित कार्यक्रम में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित कराएंगे। स्कूलों में मनेगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। शिक्षा परियोजना परिषद कैमूर के निर्देशानुसार 21 जून को कैमूर के सभी विद्यालयों में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। कैमूर जिला नियोजनालय में कैरियर इन्फॉर्मेशन सेंटर की गई है व्यवस्था। जी हां, युवाओं के लिए कैमूर जिला नियोजनालय में अब इन्फॉर्मेशन की व्यवस्था की गई है और इसके लिए वहां पर पुस्तकें, मैगजीन और प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें उपलब्ध करवाई गई हैं। युवाओं को स्वावलंबी तथा रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए इस तरह की योजनाएं कैमूर

में चलाई जा रही हैं। कैमूर में पंजीकृत बेरोजगार युवक युवतियों को भी जॉब पाने में परेशानी हो रही है। जिस हिसाब से आवेदक नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस अनुपात में नियोजन कैंप में शामिल होने वाली कंपनियां बेरोजगारों को रोजगार देने में सक्षम नहीं दिख रही हैं। तो इसके लिए रोजगार कैंप का फिर से आयोजन किया जा रहा है और रोजगार की दिशा में पहल भी की जा रही है, जिसके लिए अब कैरियर इन्फॉर्मेशन सेंटर में दैनिक समाचार पत्र और ढेर सारी किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

रोहतास जिला में लोक शिकायत निवारण के 18 मामलों का किया गया निष्पादन। जी हां, रोहतास जिला के सासाराम में लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील के अंतर्गत प्राप्त 29 अपील आवेदनों पर जिला पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की गई।

की दिशा में पहल भी की जा रही है, जिसके लिए अब कैरियर इन्फॉर्मेशन सेंटर में दैनिक समाचार पत्र और ढेर सारी किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

रोहतास जिला में लोक शिकायत निवारण के 18 मामलों का किया गया निष्पादन। जी हां, रोहतास जिला के सासाराम में लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील के अंतर्गत प्राप्त 29 अपील आवेदनों पर जिला पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकार के रूप में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी रोहतास, निदेशक DRDA, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी, प्रभारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। रोहतास जिला के सासाराम में EVM व VVPAT का जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कल किया निरीक्षण।

कैमूर जिले में खरीफ महाअभियान में किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण व अनुदानित बीज भी मिलेगा। कल कैमूर के लिच्छवी भवन में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आगाज, नई तकनीक की दी जाएगी जानकारी।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि कैमूर जिले में शारदीय खरीफ महाअभियान का शुभारंभ किया गया है और इस महाअभियान में किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ अनुदानित बीज का वितरण भी किया जा रहा है। जिला स्तर पर कल 8 जून को लिच्छवी भवन भभुआ में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जबकि 10 से 20 जून तक सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो ये थी स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ और अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको एक गीत। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की युगल आवाज़ें हैं। इंतकाम फिल्म से हमने इस गीत को चुना है। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, अभी जो आपने ये गीत सुना इंतकाम फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, तो बता दें आपको कि ये गीत राग भैरवी पर आधारित है। जी हाँ, राग भैरवी को शास्त्रीय परंपरा में सुबह का राग माना जाता है, जो सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे के बीच गाया जाता है। और इस राग की मधुरता ये है कि ये राग बहुत ही शांत होता है और प्रातःकाल की सुंदर बेला में गाया जाता है, जो कि काफ़ी कर्णप्रिय लगता है। और चलिए अब इसी के साथ कार्यक्रम के अंत में लेते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों को। आज लगभग सभी अखबारों ने एक खबर को प्रमुखता से छापा है कि वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। जी हाँ, आगामी T20 मैच में और जो अभी एशियन गेम्स के अलावा जो आगामी मैच होने जा रहे हैं, उन सभी मैचों में वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। जी हाँ, महज 15 वर्ष और 71 दिन की उम्र में ये राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और इसी के साथ एक और खबर हम आपको बताते हैं, बिहार के अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा की अब जांच होगी। मुजफ्फरपुर की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग का ये बड़ा फैसला है। विक्रमशिला सेतु पर आज से चलेंगी छोटी गाड़ियां। और प्रभात खबर ने लिखा है कि री एवल्यूशन की स्कैनिंग को एमटी ही करेगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर उपजे विवाद के बीच CBSE ने बड़ा कदम उठाया है। गैर इरादतन हत्या में भाजपा विधायक राजू सिंह दोषी करार दिए गए हैं। और चलते चलते अब आपको बता दें खेलों के बारे में, तो खेल समाचार में हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ कल जो भारत का मैच हुआ है उसमें शुभमन गिल ने नाबाद 103 रन बनाए हैं और राहुल ने 100 रन बनाए हैं। हॉकी में भारत तीसरी बार चैंपियन बना है। अंडर 18 एशिया कप में भारत ने जापान को 4-1 से कल हरा दिया। और इसी के साथ अब चलते चलते कार्यक्रम में एक और गीत सुनते हैं जवान फिल्म से, लीजिए सुनिए।

और चलते चलते आपको बता दें मौसम का हाल। तो आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब इसी के साथ नमस्ते रोहतास कार्यक्रम से रागिनी को अनुमति दीजिए। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और अब 8 बज चुके हैं, तो आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात।
1: रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
5: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत

0: परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Full potential of our time.
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1

0: से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार

0: परिवार हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में एक देशभक्ति गीत। इसे हमने लिया है राजीव फिल्म से। गायक स्वर है सुनिधि चौहान का।

सुनिधि चौहान और सत्यजीत जीना की युगल आवाज़ में अभी आपने राजी फिल्म का ये देशभक्ति गीत सुना। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपके कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इसी के साथ लीजिए, सुनिए कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत।

जादूगर तेरे नैना। अभी आपने ये गीत सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की युगल आवाज़ में। और हमारे जो ये श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की थी। राजेश साबले पाटिल हैं, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपने गीत तो सही चुना है लेकिन फिल्म का नाम गलत लिख दिया। आपने लिखा है फिल्म का नाम समुंदर, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जादूगर तेरे नैना मन मंदिर फिल्म का गीत है, जो कि 1971 में फिल्म आई थी और इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं संजीव कुमार और वहीदा रहमान ने। तो श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि जब भी आप हमें फरमाइशी खत लिखते हैं तो गीत के साथ साथ रिलेटेड फिल्म का नाम भी सही लिखें। और आपको बता दें कि इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इसी गीत में हम शामिल करते हैं नरहन एस्टेट के हमारे श्रोताओं को भी। ये हैं नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम, आराध्या और विनीता मिश्रा। साथ ही एक और परिवार के सदस्य हैं स्नेहलता जैन। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको एक कव्वाली। जी हाँ, आज हमारे प्रोग्राम में कव्वाली की फरमाइश ज़्यादा है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आशा भोसले और साथियों के स्वर में

ही तो है इस फिल्म से कव्वाली। लिखा है साहिर ने, संगीत रोशन का है और इस गीत को सुनना चाहते हैं बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय। दुबिया गाजीपुर से हैं प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय। शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश रॉय, प्रीति रॉय, नवनीत रॉय। और ये हमारे श्रोता आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता और प्रिंस एकांश। बदलापुर मुंबई से हमें ये ख़त लिखकर भेजा सिद्धांत, प्रणीता और अर्जुन ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली, सुमित और कुमारी ध्वनि। तो आप सभी को सुनवाने जा रहे हैं दिल ही तो है फिल्म से लिया गया ये कव्वाली।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें फिल्म हम किसी से कम नहीं में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आरजी बर्मन का संगीत है।

0: श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की युगल आवाज़ें थीं, मजरू के बोल थे, आरटी बर्मन का संगीत था। और इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन श्रोताओं ने डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिस्का और तन्मय गजबिये। और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम धुर्रा बांधा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार, युवराज, हरि नारायण सिंह। कोई सभी गीत सुनने के ख्वाहिशमंद थे धर सीवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना। तो इसी के साथ अब हमारा आज का यह गीत का कार्यक्रम पसंद आपकी यहीं संपन्न हुआ। दीजिए इजाजत रागिनी को, नमस्कार। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हुए हैं। अब आप आकाशवाणी पटना से थोड़ी ही देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
3: डेयरी, एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने का निर्णय लिया। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप अनिवार्य होगा। और प्रदेश में

कल शाम आंधी बारिश की घटना में नुकसान की खबर। दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 जून के बाद राज्य में प्रवेश करने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। विभाग के सचिव कुमार रवि

0: करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, सिविल सर्जन और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के निदेशकों को 15 दिनों के भीतर फायर ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 7 प्रमुख बिंदुओं पर अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। इधर अग्निशमन पुलिस के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार नट ने बताया कि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर पटना के 5 अस्पतालों और 3 होटलों को सील करने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा 52 अस्पतालों और होटलों से अग्नि सुरक्षा मानकों में लापरवाही के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में भी अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराई गई है।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्युपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है, जो यदि वे उसका मिट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं।
0: गौरतलब है कि पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने इस संबंध में सभी कुलपतियों को निर्देश जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत राज्य के 268 अंगीभूत और 479 संबद्ध कॉलेजों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। लगभग 60,000 एनसीसी कैडेटों को आपदा प्रबंधन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही एनएसएस से जुड़े युवाओं को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को भूकंप, बाढ़, अग्निकांड और अन्य प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं से निपटने की जानकारी दी जाएगी। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तिथि है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यकता होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। इधर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नामांकन में अभी कल तक का समय है, इसलिए इंतजार करना चाहिए।
2: अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप इंतजार कीजिए, आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार।
0: राज्य के विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। राज्यपाल सचिवालय ने इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार इंटर्नशिप गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी की है। नई व्यवस्था के तहत 4 वर्षीय CBCS आधारित स्नातक पाठ्यक्रम में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के बाद अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप कराई जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रों को 4 से 6 सप्ताह की अवधि में कुल 120 घंटे की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। इंटर्नशिप 4 क्रेडिट की होगी और इसका क्रेडिट 5वें सेमेस्टर में जोड़ा जाएगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी छात्र को समूह में इंटर्नशिप करने की अनुमति नहीं होगी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। राज्य में 27 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 40 ट्रैफिक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही इन स्थानों पर 5

0: 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। परिवहन विभाग के अनुसार जनवरी 2022 से अब तक 50,663 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें सबसे अधिक पटना में हिट एंड रन के मामले दर्ज किए गए। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो 200 ग्राम सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी कीमत 1,040 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। 5 किलोग्राम भार वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपए से बढ़ाकर 386 रुपए कर दिया गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के दक्षिणी भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही उमस भरी गर्मी भी बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आज सीमांचल के कई जिलों समेत राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है।
4: राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर, दक्षिण बिहार एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। पूर्वी चंपारण के पताही में सबसे अधिक 74.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्णिया के रुपौली में 71.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, भागलपुर और कटिहार समेत कई अन्य जिलों में भी बारिश हुई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बक्सर, बांका, मुंगेर और जमुई जिले में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 जून के बाद प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार मानसून सामान्य गति से बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के पूर्वोत्तर भागों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों के चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी संदेश को न माने और न ही भुगतान

0: करें। एनटीए ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि ऐसे संदेश आगे ना भेजें और धोखाधड़ी के झांसे में ना आएं। एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से अफवाहों से बचने और केवल सत्यापित वेबसाइट और चैनलों के माध्यम से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है। पथ निर्माण विभाग ने बक्सर बरौनी रेलखंड स्थित LC70A पर निर्माणाधीन आरओबी के धंसने के मामले में 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने बताया कि आरओबी की मुख्य संरचना पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से रेलवे प्रशासन ने आरओबी पर यातायात बंद कर दिया है। राज्य के 180 परीक्षा केंद्रों पर आज बीएड की परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि सभी केंद्रों पर कदाचार रोकने के लिए जैमर लगाए गए हैं। परीक्षार्थियों की जांच के लिए बायोमेट्रिक मशीन भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाने के लिए पूरी जांच की जा रही है। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला सेतु पर आज से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। वर्तमान में एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही परिचालन की अनुमति दी गई है। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के बंगलापुर मोहल्ले के एक मकान में एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में राजस्व विभाग के विशेष सर्वेक्षण अमीन कंचन राम समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अररिया जिला समाहरणालय के परमान सभागार में जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति 20 सूत्री की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की। सुपौल जिले के दत्ता टोला क्षेत्र में तैनात एसएसबी टीम ने एक नेपाली वाहन से 1700 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त कर लिया है। भोजपुर की स्थानीय अदालत ने जून 2023 में दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पति और सास ससुर को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 1,00,000 रुपए का आर्थिक दंड भी सुनाया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने वैभव सूर्यवंशी के भारतीय क्रिकेट टीम में चयन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, वैभव टीम इंडिया में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर शीर्षक दिया है, 15 साल के वैभव से चमकी भारतीय क्रिकेट टीम। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, जीएसटी छूट वाले सस्ते दिन गुजरे, 90 दिन में 80% चीजें पहले से ज्यादा महंगी। आज अखबार की सुर्खी है, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रमंडल यूथ चेस चैंपियनशिप 2026 के अंडर 18 के विजेता मोहम्मद रियान को 22,50,000 रुपये का चेक सौंपा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने का निर्णय लिया। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप अनिवार्य होगा। और प्रदेश में कल शाम आंधी बारिश की घटना में नुकसान की खबर। दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 जून के बाद राज्य में प्रवेश करने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही।
2: FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए एक नज़र डालते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर बाद 9:10 पर गीत मालिका कार्यक्रम में आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत। आज के फनकार ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आकाशवाणी विविध भारती से 9:30 पर। आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा हिंदी समाचार सुबह 10:00। बच्चों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर का प्रसारण हम लेकर आएंगे सुबह 10:05 से। 10:30 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीत। 10:45 पर सुनिएगा दस्तार कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। पूर्वाह्न 11:00 से 12:00 तक का समय होगा आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग का। विविध भारती का प्रसारण आप हमारे केंद्र से आज सुनेंगे 11:00 से 12:00 तक, 12:05 से दोपहर 2:00 तक, दोपहर 2:30 से शाम 5:00 तक और रात 9:30 से रात 10:00 तक।

श्रोताओं, रसधार कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:45 पर। और हम आपको बता दें कि हिंदी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 12:12। प्रादेशिक समाचार 2:02, 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर रोजगार सूचना हम रिले करेंगे हमारे आकाशवाणी पटना से। आकाशवाणी दिल्ली से मध्याह्न समाचार आप सुनेंगे 2:15 पर। शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। उद्घोषणा और कार्यक्रम ब्यूरो आप सुनेंगे आकाशवाणी सासाराम से शाम 5:05 से 5:10 तक। 5:10 पर सुनिएगा वंदन कार्यक्रम में भक्ति संगीत। विज्ञान एवं पर्यावरण ये साप्ताहिक कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आज शाम 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर एल ए रामदास और डॉक्टर रजनीकांता नायडू आज के वैज्ञानिक। जी हाँ, इनके बारे में विशेष जानकारी। साथ ही चर्चा होगी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में। शाम 6:00 भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे और शाम 6:05 पर हम लेकर आएंगे आकाशवाणी पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण हम लेकर आएंगे शाम 6:10 पर। सांझ गीत कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा भोजपुरी फिल्म संगीत का शाम 6:40 पर। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।

कालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास सुनिएगा 7:15 पर। 7:25 से आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार के लिए। रात 7:50 से 8:45 तक आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ई मनपसंद। 8:45 से सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। रात 9 हमारे सासाराम केंद्र से लोकधारा कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। 9:15 पर कार्यक्रम महफिल में आप सुनेंगे गजल। 9:30 से 10 तक विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 10 हमारे सासाराम केंद्र से रसरंग में सुनिएगा हिंदी एल्बम सॉन्ग और चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत रात 10:30 पर आप सुनेंगे। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान हम लेकर आएंगे रात 10:55 से रात 11 तक। रात 11 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 9:10 हुए हैं। गीत मालिका कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुछ हिंदी फिल्मी सॉन्ग। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इंसाफ द जस्टिस फिल्म में उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें। समीर के बोलों को संगीत दिया निखिल विनय ने।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम तुम्हारे हैं सनम, इस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाज़ में। समीर के बोल थे, निखिल विनय का संगीत था। और अब कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाते हैं आपको, प्रवीण भारद्वाज का लिखा हुआ। संगीतकार हैं आनंद राज आनंद, आवाज़ें सोनू निगम के साथ अलका याग्निक की है और फिल्म है जानसी। लोग कहते हैं कि नज़रें मिलें तो प्यार का इजहार होता है, लोग कहते हैं नज़रें मिलें तो प्यार का इजहार होता है, लेकिन हम कहते हैं कि जब भी आप पास होते हैं तो हमारा हर लम्हा गुलजार होता है।

जी हाँ श्रोताओं, बेताब आँखें, बेचैन सांसें, कहने लगी बस यही दिल है कि मानता नहीं। ये बेहद ही खूबसूरत सुरीला सा गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल की सुरीली आवाज़ में दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। फैज अनवर के बोल थे, नदीम श्रवण का संगीत था। और हम आपको बता दें कि अनुराधा पौडवाल जी को इस फिल्म के इसी गीत के लिए मिला था फिल्म फेयर का

ऑस्कर। तो ये संगीत में रोमांटिक फिल्म रही थी और जिसका गीत हमने आपको सुनवाया। अब इसी के साथ हमारा आज का गीत मालिका का सफ़र यहीं संपन्न हुआ। दीजिए इजाज़त, रागिनी को नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम आज के फनकार के लिए।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को नमस्कार।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
0: साथियों, आज मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ कहना है। निर्देशक, लेखक, पटकथाकार, पत्रकार और उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में।

7 जून 1914 को पानीपत हरियाणा में जन्म हुआ ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।

0: बोलना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल।
1: बात शुरू करते हैं अब्बास साहब के जन्म के समय की, जबकि वो अंग्रेजों के शासन का समय था। तब 1914 में अब्बास साहब का जन्म पानीपत के एक मशहूर उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के यहाँ हुआ, जो कि मिर्जा गालिब के शिष्य थे।

0: ये फिजाए बुला रहे।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास यानी के ए अब्बास के दादा ख्वाजा गुलाम अब्बास ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा हाली मुस्लिम हाई स्कूल में ली और फिर 1933 में अंग्रेजी में बीए और 1935 में एलएलबी की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ली।

0: जापान।
1: के ए अब्बास साहब ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की और फिर 1936 में वो पार्ट टाइम पब्लिसिस्ट के रूप में जुड़ गए बॉम्बे टॉकीज से, और इसी प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने 1941 में पहली बार स्क्रीन प्ले लिखा। फिल्म थी नया संसार।

0: हालात बदलते।
1: फिल्मों से जुड़ने के साथ साथ अब्बास साहब उस दौर के लगभग सभी बड़े अखबारों में कॉलम लिखा करते थे और साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम अपना शुरू कर दिया था। चेतन आनंद की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म नीचा नगर और वी शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी उन्हीं ने लिखी थी।
2: अपने मरीजों में एक नई बीमारी फैल रही है फोड़े की तरह, अगर ये ज्यादा फैल गए तो इसका नतीजा निहायत खौफनाक होगा। अपने जिस्म में दाखिल करूंगा जिससे पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत पर इसके जहर का कैसा असर होता है।
3: ची, ची, मेरा जख्म अच्छा हो रहा है, नई दवा कारगर साबित हुई, मिल गया, मिल गया, जालिम फोड़े का इलाज मिल गया।

ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1945 में पहली फिल्म निर्देशित की धरती के लाल। 1951 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपना बैनर स्थापित किया नया संसार, जिसके अंतर्गत लगातार फिल्मों का निर्माण किया जाता रहा। 1953 में अनहोनी, मुन्ना और राही ये फिल्म

0: बनी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली उनकी 1964 की फिल्म थी शहर और सपना। 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई फिल्म सात हिंदुस्तानी, जिसने जीता नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। और यहां हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि यही वो फिल्म थी जिसके जरिए आज के महानायक अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर शुरू हुआ था।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से मेरी पहली मुलाकात मुंबई में हुई, ये उस सिलसिले में हुई जिसमें वो कुछ नए कलाकारों को ढूंढ रहे थे, नए चेहरों को ढूंढ रहे थे अपनी आने वाली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए। मैं उन दिनों कलकत्ते की नौकरी छोड़ करके दिल्ली आया हुआ था, और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं अब्बास साहब से मिलने यहाँ बम्बई आया, जुहू तारा रोड पर उनके अपार्टमेंट में जहाँ पर वो अपना लेखन वगैरह किया करते थे, वहाँ उनसे मिलने गया। एक आधा घंटा मिलने के बाद मैं जब नीचे आया तो उनके असिस्टेंट थे तीनू आनंद, जो कि बाद में जाकर के सत्यजीत रे के असिस्टेंट बने, उन्होंने आकर के मुझे नीचे बताया कि अब्बास साहब ने आपकी जो तस्वीर देखी और आपसे जो मुलाकात हुई वो उनको पसंद आई, और मेरी शुरुआत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ हुई। उनकी सोच जो थी वो एक बहुत ही आम आदमी की सोच होती थी। उनके मन में ये था कि ये जिस तरह से उनके किरदार या जो चरित्र उन्होंने लिखे थे इस फिल्म के बारे में, जिस तरह से वो गुजरे होंगे या जिस तरीके से उन्होंने अपना ये जीवन व्यतीत किया होगा, उसी तरह से उनके कलाकारों को भी फिल्म में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से एक थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में गाड़ी में बैठ करके हम लोग गोवा गए, और रास्ते में जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता गया, अगर किसी सर्किट हाउस में जंगल के बीच कहीं एक मकान मिल जाता था तो वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल में पूरा कास्ट और पूरे वर्कर्स सब एक साथ वहाँ ज़मीन पे हम लोग सोते थे, और सभी एक किस्म का खाना खाते थे, एक ही कमरे में सब लोग रहते थे, एक ही साथ, कोई भेदभाव नहीं था। एक उनका एक बहुत ही सोशलिस्टिक और मॉरल इशू था ये उनके जीवन में।
0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम पुरस्कारों से ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को नवाजा गया। 1969 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्मी दुनिया में जहां अनेकों फिल्मों के लिए लेखन किया, उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन पैरेलल सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा कहा जाता है, वहीं ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अब्बास साहब की ट्यूनिंग फिल्मकार राज कपूर के साथ बहुत अच्छी थी।
2: मुंबई में सब बहरे बसते हैं क्या?
3: बहरे भी और अंधे भी, इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवा रुपयों की झनकार के। मेरे भाई बम्बई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा। मगधरा सामने से हटके खड़े हो, मेरे भाई धंधे का टाइम है। माई
2: धंधा यानी कि काम ना है? काम जो भाई, तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए?
3: जो मैं करता हूँ, भीख मांगनी चाहिए।
2: नहीं कोई काम बताओ मुझे, काम बताओ।
3: तो सोचना पड़ेगा, कुछ पढ़ा लिखा है?
2: ये पास हूँ सच का। ये देखो मेरी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो।
3: ईमानदार हो?
2: सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल। ये देखो,
3: जवान हो, मेहनत कर सकते हो?
2: डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ, कोई करा के देख ले।
3: तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता?
2: काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं?
3: ये कि ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420।
2: थैंक यू बॉस, थैंक यू।

के ए अब्बास ने राज कपूर की चर्चित फिल्मों में से जागते रहो, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हेना फिल्में लिखी।

ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम कभी रुकी नहीं। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो मुंबई के लोकप्रिय अखबारों ब्रिट्स और क्रॉनिकल के लिए कॉलम लिखते रहे। 1 जून 1987 को 72 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया।

0: लेखक, निर्देशक, पटकथाकार, उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और स्वर था अमरकांत का, प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब इजाजत दीजिए, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने वर्ष 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच चुके हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन गतिविधियों के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। अमरीकी सेना ने होर्मूज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालेंस्का को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से मात दी। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका सेलेस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उधर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो कोबेली आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय हिस्सों केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में आज लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप हिंदी समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे बच्चों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर का प्रसारण। स्वर एवं संकलन वंदना कुमारी का।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: स्वागत है आप सभी का आज के अंकुर कार्यक्रम में। बच्चों, आप सभी को आपकी वंदना दीदी का बहुत सारा प्यार।
1: आपको भी हम बच्चों का बहुत सारा प्यार।
0: हमेशा की तरह एक बार फिर हम सभी शामिल हैं आज के अंकुर कार्यक्रम में। कार्यक्रम में अन्य सभी बातों के अलावा होती हैं आप सब बच्चों की प्यारी प्यारी और मीठी मीठी आवाज में कविता, चुटकुला, गीत वगैरह। कैसा लगता है सुनना और सुनाना आपको?
2: मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दीदी।
3: मुझे भी यह कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बातें करते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर, जो कि प्रत्येक साल 12 जून को मनाया जाता है।
3: बाल श्रम क्या होता है दीदी?
0: बाल श्रम बच्चों द्वारा किया जाने वाला वह कार्य होता है जो उनसे जबरदस्ती करवाया जाता है। उस उम्र में जब उन्हें माता पिता और बड़ों के प्यार और देखभाल की जरूरत होती है, ऐसे में जब उनसे कोई जबरदस्ती काम करवाया जाए बड़ों की तरह, तो यह बाल श्रम के अंतर्गत आता है। ऐसे काम बच्चों के लिए खतरनाक या नुकसानदायक भी हो सकते हैं। वैसे सभी काम जो बच्चों को स्कूल जाने में या शिक्षा ग्रहण करने में बाधा बनते हैं या उन पर पढ़ाई और काम दोनों के दोहरे बोझ संभालने की जिम्मेदारी हो, ऐसे सभी काम बाल श्रम में ही आते हैं।
3: लेकिन दीदी, बच्चे आखिर कौन कौन से काम करते होंगे जिसे बाल श्रम कहा जाता है?
0: बच्चों, बाल श्रम के अंतर्गत बच्चे पत्थर काटने के काम में लगे रहते हैं या अन्य उद्योगों जैसे खनन, जरी और कढ़ाई के कामों में भी लगे रहते हैं। ढाबा या होटल वगैरह में भी बच्चे काम करते हैं।
2: लेकिन बच्चे क्यों करते हैं ये सब काम?
0: बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी मजबूरियां होती हैं जो बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं। एक तो गरीबी, यानी परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि घर का खर्च आसानी से चल जाए। ऐसी स्थिति में भी बच्चे बाहर के काम करने पर मजबूर होते हैं। ऐसी भी स्थिति आती है कि जब घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता, तब भी बच्चे बाल श्रम करने पर मजबूर हो जाते हैं।
3: दीदी, क्या सभी काम बाल श्रम होते हैं?
0: ऐसी बात नहीं है। जो काम बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करते या जिन कामों से उनकी पढ़ाई पर प्रभाव नहीं पड़ता, वे सभी बाल श्रम नहीं कहे जा सकते। बच्चों द्वारा किए जाने वाले वे सभी काम जो वे पढ़ाई के बाद या छुट्टियों में घर में सहायता करने के लिए करते हैं, वे सभी बाल श्रम में नहीं आते। साथ ही वे सभी काम जो उनके विकास में सहायक हो, बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आते। यहाँ यह बात गौर करने की है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यवसायिक कार्यों को करने से रोक लगाया गया है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे यदि किसी दुकान में, होटल में या किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो यह बाल श्रम के अंतर्गत आता है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अब तो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से जोड़ा गया है। यानी इस उम्र तक के बच्चों को सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा दी जाती है। माता पिता को भी चाहिए कि उनकी पहली प्राथमिकता बच्चे की उचित और नियमित शिक्षा हो। साथ ही प्रत्येक परिवार को अच्छी आय अर्जित करनी चाहिए जिससे बच्चे काम में न लग सके। बच्चों, बाल श्रम की समस्या हमारे समाज के लिए एक अभिशाप की तरह है। इसे दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की गई थी। प्रत्येक वर्ष 12 जून को

में बाल श्रमिकों की दुर्दशा को सामने लाने के लिए ही इस दिवस का आयोजन किया जाता है, ताकि बच्चों को उनका उचित अधिकार मिल सके और वे भी अन्य बच्चों की तरह ही शिक्षा पा सके और जीवन में एक अच्छा इंसान बन सके। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर अभी हम कर रहे थे बातें। सच कहा जाए तो बच्चों, आप सबकी मुट्ठी में ही आप सबका तकदीर है। आपकी आंखों में एक सपना सजा है जो आने वाले भविष्य के हैं। आइए जानते हैं क्या क्या सोचते हैं आप सब बच्चे आने वाली दुनिया के बारे में। कैसी होगी भविष्य के सपनों की दुनिया।

0: कार्यक्रम के इस भाग में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए सुनाती हूँ आपको एक छोटी गौरैया की कहानी।
1: छोटी गौरैया की कहानी?
0: हाँ, गौरैया थी तो छोटी, लेकिन उसका विश्वास, उसका दृढ़ निश्चय बहुत बड़ा था। और कहते हैं ना कि जिसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे यह काम पूरा करना है, यह पाना है, तो अपनी मेहनत से वह उस चीज को हासिल कर ही लेता है। कुछ ऐसा ही किया था एक नन्ही गौरैया ने। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह होने पर अपने अंडों को वहीं छोड़कर वह गौरैया दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र इठलाते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता? समुद्र के इठलाने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, अब तुम ही मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आ गई और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया ने कहा, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर और जोर से हंसने लगा। गौरैया एकटक समुद्र को देखती रही। वह समुद्र से बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए। बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में थी, वह कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ वह गौरैया अपने काम में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने काम में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी पशु पक्षी हैरान थे, सभी को उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे ही करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़देव श्री हरि भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की जिद पर अड़ी है, जो कि संभव ही नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया

0: निरंतर अपने काम में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और इठलाते हुए बोली, देखा मैंने कर दिखाया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर लें तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूरा हो जाता है। अब बताइए बच्चों, कैसी लगी यह कहानी आपको?
1: बहुत अच्छी लगी दीदी।
0: इस कहानी के बाद आइए सुनते हैं यह गीत।

0: आइए सुनते हैं आपकी मीठी मीठी आवाज में कविता पहेली वगैरह सुनाने के लिए तैयार है ना आप सब?
1: जी दीदी।
0: सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है?
2: अर्पिता शर्मा।
3: क्या सुनाइएगा?
2: कविता
3: सुनाइए।
2: रंग बिरंगे कपड़े पहने नील गगन से परी उतरती दिए हाथ में छड़ी हुआ प्यारे मीठे गीत सुनाती गाती चलती मन माती लाती बच्चों को यह खूब सुनी खिलाती खूब हंसाती
3: बच्चों को यह खूब हंसाती। बहुत प्यारी कविता थी अर्पिता की।
0: और बताइए आपका क्या नाम है?
4: राहुल कुशवाहा।
0: क्या सुनाइएगा?
4: पहेली।
0: अच्छा पहेली। पहेली बुझने के लिए आप सब तैयार है ना?
5: जी दीदी।
0: बुझाइए अपने पहले।
4: एक राजा की अनोखी रानी दून के सहारे पीती पानी।
0: और आपका क्या नाम है?
6: आशीष कुमार।
0: क्या सुनाइएगा?
6: चुटकुल्ला।
0: अच्छा सुनाइए।
6: मुन्ना कुत्ते पर बैठकर क्या कर रहे हो? मम्मी लेख लिख रहा हूँ। लेकिन कुत्ते पर बैठकर क्यों लिख रहे हो? मम्मी मैम ने कहा था कुत्ते पर लेख लिख कर लाना।
0: बच्चों आपकी प्यारी प्यारी बातों के साथ ही कार्यक्रम का समय भी अब समाप्त होने वाला है। कार्यक्रम सुन रहे अन्य श्रोता बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम? अपनी बातों को पत्र में लिखें और भेज दें हमें इस पते पर। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम अंकुर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम पिन कोड 821115। इसी पते पर भेजे गए आपके पत्रों का रहेगा हमें बहुत ही इंतजार। दीजिए अपनी वंदना दीदी को इजाजत। जय हिंद बच्चों।
1: जय।

अंकुर, अभी आप सुन रहे थे ये साप्ताहिक कार्यक्रम जिसे हमने बच्चों के लिए प्रसारित किया आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो रहे हैं। लोक माधुरी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मदन रॉय की आवाज़ में गणेश दत्त किरण का लिखा हुआ ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत, जिसे संगीतबद्ध किया भरत शर्मा व्यास ने और एल्बम है निर्गुण गीत एल्बम।

मदन रॉय के स्वर में अभी आपने सुना ये निर्गुण गीत। एक बार फिर इन्हीं की आवाज़ में अब लीजिए सुनिए बलम गईले झरिया, इस एल्बम का एक भोजपुरी एल्बम लोकगीत। गीत लिखा दीप मोहम्मद बादी ने और संगीत है भरत शर्मा व्यास का।

मदन रॉय के गाए हुए इसी भोजपुरी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम रस माधुरी बस थोड़ी ही देर में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:45 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए रसधार कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। सबसे पहले आपको एक सुनवाते हैं भक्ति सॉन्ग निमिया के दाढ़ मैया। इस एल्बम से आवाज़ राजेश तिवारी रत्न की है और संगीत है संजय मिश्रा पप्पू का। ये एक पारंपरिक एल्बम सॉन्ग है।

राजेश तिवारी रत्न की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे निमिया के दाढ़ मैया एल्बम का ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और आप रसधार कार्यक्रम में सुन रहे हैं कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं आपको उदित नारायण की आवाज़ में ओढ़नी के रंग प्यार, इस एल्बम का ये एल्बम सॉन्ग जिसे लिखा श्याम देहाती ने है और संगीत से संवारा है राजेश रजनीश ने।

श्रोताओं, उदित नारायण के गाए हुए इसी गीत के साथ ही अब भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार यहीं संपन्न हुआ और अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो आज का हमारा यह प्रातःकालीन सभा का ये सफ़र अब यहीं संपन्न हुआ। दीजिए इजाज़त, रागिनी को नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे आकाशवाणी सासाराम के कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सभी का दिन ऊर्जा से भरा रहे, बस यही हमारी कामना है। और इसी के साथ हवा ये चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र और सुनते हैं वहाँ के कार्यक्रम।

0: प्रेरणादायी अविस्मरणीय यात्रा पूर्ण की है। इस 90 बरस में आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। इस गौरवशाली स्मरणोत्सव के अंतर्गत विविध भारती द्वारा इस लोक रंग महफिल का आयोजन किया गया है। इस महफिल में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत और लोक धुनों में हमारी मिट्टी की खुशबू है। सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस मंच पर उपस्थित कलाकार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से लोक संगीत पेश करेंगे, तो आइए लोक रंग की इस सुरमई शाम में हम शामिल होते हैं। आकाशवाणी के 90 बरस की एक गौरवशाली यात्रा को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा, भारत की जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, भारत के जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, उनसे भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है आकाशवाणी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष यादव। और अब अतिथियों के स्वागत की बारी है। आज के इस कार्यक्रम में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग पुष्प गुच्छ के जरिए स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं पर पौधा कायम रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो कलाकार मौजूद हैं, एक एक करके मैं उनका जल्दी से परिचय देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव माननीय राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं। बीते बरस वे पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा माटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार हैं। 20 से ज्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं, जिनमें कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास और लोक कथा संग्रह शामिल हैं। वे एक सक्रिय थिएटर और फिल्म कलाकार हैं। लाडली मीडिया सम्मान और नेमी चंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं। मोहन राकेश सम्मान, इंडियन ऑयल वीमेन अचीवर सम्मान उन्हें मिल चुका है। लाल कप्तान, छमशेरा, महारानी, माँ जैसी फिल्में और वेब सीरीज उन्होंने की हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं मधुबन की मुनिया, प्रेग्नेंट फादर, दूसरा आदमी, पीर पराई, आवतनिक प्रेम करें, अगले जन्म मोहे, बिटिया न कीजो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया था। प्राध्यापक प्रशांत

0: एक बहुत मशहूर लोक कवि हैं, कथा तिच्चा लग्नाची और स्पर्श जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, गाए हैं और स्वरबद्ध किए हैं। हिंदी उर्दू मराठी मुशायरे में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व प्रशांत जी ने किया है। आईचा कविता नाम की उनकी प्रस्तुति के भारत भर में 5600 शो हो चुके हैं। कमाल का रिकॉर्ड, नामदेव ढसाल पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार हैं। उनकी कृतियां हैं वेदना सातारकर, कबीरांची देन, माए अर्थात आईची कविता खंड एक और खंड दो, अभिवादन बा भीम। नरोत्तम बेन विगत 33 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहे हैं। जबलपुर से रंगकर्म की शुरुआत की थी और इस वक्त मुंबई में भी रंगकर्म जारी है। एक नाटक की रिहर्सल से सीधे इस मंच पर पदार्पण किया है उन्होंने। अभिनय कार्यशालाओं का संचालन करते हैं। कई नाटकों का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा महेश्वर में सन 1994 में आयोजित अभिनय कार्यशाला में अभिनेता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई विज्ञापनों, धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है और बुंदेली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। नरोत्तम बेन यहां बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। ममता वर्मा बागेश्वर उत्तराखंड में पैदा हुई, 2021 से मुंबई आई हैं और कई सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने प्रस्तुति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार विविध भारती के लिए वो मंच पर गीत प्रस्तुतियां करने वाली हैं। तो ममता का बहुत हौसला बढ़ाने की जरूरत है। ये हमारे कलाकार हैं और इसके अलावा बहुत ही काबिल कलाकार हारमोनियम, तबला और ढोलक पर मौजूद हैं। और इसके अलावा डफ और घुंघरू जैसे सहायक वाद्यों पर मेरे अपने साथी विविध भारती के मशहूर उद्घोषक जयंत पात्रीकर साथ देंगे। तो ये हमारा जमावड़ा है और इस कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह करेंगी। तो आइए ममता सिंह, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: सभी अतिथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत। आज की जो संध्या समर्पित है हमारे मिट्टी की उस मीठी खुशबू को, जो लोकगीतों की स्वर लहरियों में बसती है। लोकगीत यानी हमारी परंपराओं की धड़कन, हमारे गांवों की मुस्कान, माँ की लोरी, खेतों की गूंज, त्योहारों की रौनक और रिश्तों की मिठास। जब लोकगीत गूंजते हैं तो सिर्फ सुर नहीं बजते। तो चलिए फिर इस रंगारंग संध्या में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुरों का जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ते आए हैं। लोकगीत में पूरी परंपरा है, पूरी संस्कृति है, रिश्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विदुषी शैलेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में। जरा जोरदार तालियों से स्वागत। वैसे तो देश के सभी राज्य में लोकगीत की अलग परंपरा है, अलग छटा है, अलग रंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोकगीत एक खास रंग लिए होता है, क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की परंपरा रही। विवाह गीत जब गाते हैं तो उससे पहले देवी गीत गाते हैं। तो माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं।
2: आप सभी के हमारे प्रणाम स्वीकार करें। अपने माटी की सेवा खातिर यहाँ बुलावल ले लेंगे। आज मुझे विविध भारती ने याद किया है अपनी लोक रंग सृजन भारती की श्रृंखला में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आकाशवाणी की अहम भूमिका है। मुझे गढ़ने में हर समय मुझे आकाशवाणी ने एक सर्वोत्तम मंच दिया और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। तो सरस्वती का हम लोग के भोग में सुरस्वती कहीं लगा, तब सुनावत है आप सबके
1: सुरस्वती मैया की जय।
2: हाँ।

0: वाह क्या बात है।
1: जाने माने सभी जो उपस्थित गण हैं सबका मैं मंच से स्वागत करती हूँ, बहुत आभारी हूँ विविध भारती की।
0: शुक्रिया शैलेश जी। अभी यहाँ पर लोकगीतों की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है।
1: देखिए विविध भारती आपका 90 वर्ष,
0: तो उस पर कुछ गा रही?
1: हाँ सुनाई गाती हूँ इतना।

0: क्या सुंदर अंदाज में आपने पेश किया। तो ये भी बता दीजिए कि इन मौकों पर इस ये लोकगीत गाया जाता है। इस
1: ये तो सोहर है, 150-200 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। जब प्रसव पीड़ा में नारी होती है तो सोहर इसका नाम ही है। तो इसके स्वर ऐसे हैं कि जिनसे वो अपने सारे कष्ट को भूल जाती है, मतलब वो हर लेता है, क्योंकि म्यूजिक और स्वर जो ईश्वर तक जाने का इतना एक सहज माध्यम, इसीलिए माना गया है कि इसके जो भाव हैं, इसके जो लगाव हैं सुरों के, वो ऐसे होते हैं कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं।
0: तो अब लोकगीत का कौन सा वाला रंग छेड़ रही हैं, जिस रंग में हम अभिभूत होने जा रहे हैं?
1: अब देखिए, मैं तो बलिया की हूँ, बागी बलिया, और वहाँ की मैं पहली गायिका महिला कलाकार हूँ, बलिया की पहली जी, महिला गायिका कलाकार हूँ। तो कितनी सारी वहाँ पे मुझे हमारे शब्दों में कहते ताने वगैरह भी सुनने को मिलते थे, लड़की के गवाओ तरन के ब्याह करी इनका घर के लड़की से। आज तो सब लोग, हर दूसरा घर का बच्चा या बच्ची कहता है देखिए देखिए हमारी बच्ची गा रही है, इधर देखिए कितना अच्छा गा रही है, उसको इतने सारे एक्सपोजर हैं। पर हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ तो बहुत मुश्किल था। हमारी माएँ कहती थी हम नहीं शादी करके आए हैं, इनको लड़का बना के घुमा रहे हैं, कैसे होगा इनका शादी ब्याह कास्ट के घर में। हाँ, तो घर में ही इतनी दुविधा थी। अगर मैं बलिया से सीधे भैया बम्बई ये नहीं बतावा, यहाँ देखा था सब बदल, मेट्रो गाड़ी चल रहा है, यहाँ देख के बड़ा घबराएगा भैया कहाँ सही आए, जगह आए कि नहीं आए। अच्छा, तो देखे कि भाई अब उनके पति तो मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको साड़ी भेजे एक नहीं दुई ठो, मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, भरारू घूमने आ रही है, पहन के घूमो यार, लोग देखें तो देखिए वो कैसे चल रही है। अरे

0: गाड़ी की यात्रा तो बड़ी मजेदार रहल है। शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश अपनी सरलता, लोक भाषा और लोक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां के लोकगीतों में खेत है, खलिहान है, पूरी संस्कृति है, परंपरा है। बाकी मैं नहीं बोलती हूँ, प्रशांत मोरे जी जो प्राध्यापक भी हैं और संगीत के बहुत जानकार हैं, संगीतकार भी हैं। तो प्रशांत मोरे जी आपको माइक दे रहे हैं, जरा महाराष्ट्र के लोक रंग के बारे में बताइए और सुनाइए, कुछ प्रस्तुति दीजिए।
1: सर्वांना नमस्कार। भाषा कळते ना, जरी भाषा कळली नाही तरी भावना कळेल, आणि भावना ह्या सगळ्याच ठिकाणी भाषा बदलतात पण भावना बदलत नाही।
0: बिलकुल
1: है क्या ना, भाषा बदलते भावना बदलत नाही। भावना काय असते, भावना तीच असते। सैमा

0: बहुत बहुत आभार प्रशांत जी, बहुत सुंदर गाया और ऐसे लग रहा था कि भले ही इसमें समझ में आता है कि भाषा बोली कोई भी हो, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है कि आपको मोहित कर लेती है और झूमने पर मजबूर कर देती है। अब हम नाट्यकर्मी और गायिका और अभिनेत्री विभा रानी जी को बुला रहे हैं मंच पर। बिहार के लोकगीतों की छटा हम देखेंगे और बिहार का लोक संगीत भी बहुत समृद्ध है, वहाँ के मैथिली लोकगीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रस्तुति विभा रानी देंगी। खासतौर से एक गायन का प्रकार है झिझिया, झिझिया के बारे में बताइए विभा जी क्या होता है, और फिर वो गायन का प्रकार भी प्रस्तुत कीजिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए।
1: बिहार के उत्तरी भाग मिथिला सची मैथिली भाषा है, सृजन भारती सब कार्यक्रम में ऐठा हमरा आमंत्रित कैल गेले हम।

0: भारती के बहुत बहुत आभारी छी। हमर कैरियर के शुरुआते आकाशवाणी से भेल है, तो बुझाइए जे आकाशवाणी हमरा लेल नैहर माने मायका अछि। अभी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है। एक तरफ भोजपुरी की जोरदार आवाज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रणझुंझार शिवशाही। अब उसके बीच में मैथिली बड़ी मीठी मीठी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है कि लोग कहते हैं कि उसमें मैथिली में लड़ते भी हैं तो लोगों को लगता है कि प्रेम ही करते हैं।
1: क्या बात है।
0: एक बार एक कवि सम्मेलन में एक भोजपुरी के कवि और मैथिली के कवि भी बैठे हुए थे। भोजपुरी के कवि पूरी वीर रस की कविताएं सुना गए, उसके बाद मैथिली के एक कवि आए, उन्होंने प्रेम रस की कविता सुनाई, तो भोजपुरी के कवियों को भी चढ़ा कि मैं भी प्रेम कविता सुनाऊंगा, तो वो उठे और कहा हम प्रेम करब, हम प्रेम करब। तो हरिमोहन झा जी जो मैथिली के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, वो बोले वहीं से बैठे बैठे हम माहुर लौ कर मर रहब, मतलब मैं जहर खा करके मर जाऊंगा अगर ऐसा प्रेम होगा तो। तो ऐसी मीठी और ऐसी छोटी छोटी इस तरह की भाषा है मैथिली, तो आपको दोनों के बीच में जरा संतुलन बना करके चलना होगा। ममता, आपने कहा कि झिझिया, शैलेश ने अभी सुनाया था देवी गीत सरस्वती वंदना। झिझिया दशहरे के समय में गाया जाने वाला, नृत्य किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और उसमें देवी की आराधना की जाती है, दुर्गा की आराधना की जाती है, भगवती की आराधना की जाती है, भगवती के भाई हैं भैरव, ब्रह्म उनके बोलते हैं, उनकी आराधना की जाती है।

0: लोकगीतों में कहानी किस्से होते हैं, मनुहार होता है, नोकझोंक होती है, तकरार होती है, तो एक जाट और जटिन जब बात करते हैं तो उस बातचीत को लोकगीत में कैसे पिरोया जाता है, जरा बताइए विभाजी।
1: जट जटिन मिथिला का एक खेल है, ये भी एक नृत्य है और जिसे बारिश के समय में खेला जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण कहीं बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी फसल, तो जट वो चला विदेश कि हम तो परदेश जा रहे हैं। जटिन

उसकी पत्नी उसको वो कह के गया कि जैसे ही तुम्हें आकाश में मेघ दिखे तुम मुझे आवाज देना और मैं वहां से आऊंगा। 12 बरस हो गए, इस बीच बारिश नहीं हुई। जट परदेश में था, कमाता रहा, जतिन के संदेश का इंतजार करता रहा। जतिन भी अकेली थी, वो अपने मायके चली गई। 12 साल के बाद उसने देखा कि आकाश में काले काले मेघ आए हैं, तो उसने वहीं से आवाज दी, ए जतिन,

जट्टा को आवाज सुनाई दी। उसने वहीं से कहा, एलियोगे जटिन एलियो, एलियोगे जटिन एलियो, आयब गेलियोगे जटिन आयब गेलियो। और जट्टा आ गया, जटिन भी मायके से आ गए। अब जब 12 साल के बाद पति पत्नी मिले हैं तो थोड़ा सा मान मनोबल तो होगा ना। तो जटिन कहती है, तुमसे मैंने जब जब टीका मंगवाया, गहने मंगवाए, तुम कभी भी जो है ले करके नहीं आए। मेरी बाली उम्र जो है, क्योंकि बचपन में तब शादी हो जाती थी, वो बर्बाद हो गई। तो जटा भी कहता है, मैंने जब तुमको दिया तो तुम तो मायके में जाके बैठी थी, नैहर में जाके बैठी थी, तो कैसे पहनोगे। तो ये इस जट जटिन की कथा और उसके बीच ये गीत है।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है विभा जी, बहुत अच्छा आपने गाया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार विभा जी, और बहुत कम समय में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी, शुक्रिया आपका।
1: बहुत देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की, अब हम लोगों के गाने गावे की बारी है। नानू भैया बहुत ही हो गई, चलो आ जाओ अब अपनी बुंदेली को झंडा फहरावे। बुंदेलखंड की खासियत ये है कि वहां अगर आप किसी का नाम पूछें, कहे भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब आएगा तुम्हें क्या करने, मतलब नाम बताने से पहले व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि तुम्हें करना क्या है, नाम से क्या करना है। लेकिन बुंदेलखंड में बहुत प्रेम है, नरोत्तम बेन बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। तो भैया नानू भैया इसी के साथ शुरू करो आज की महफिल, फिर तुम्हारी मर्जी जो तुम गावे चाहो।
2: प्रणाम पहले सभी जनन को, नरमदेह हर, जय महाराष्ट्र जय भारत।
3: ये बम्बुलिया और एक लमटेरा, ये बहुत ही अद्भुत चीज है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड का सबसे फेमस फॉर्म है राई। बुंदेलखंड के फोक की आप बात करेंगे तो राई के बिना मामला अधूरा होता है। ऐसा ये है बम्बुलिया और लमटेरा। लमटेरा यानी लंबी टेर, लंबी टेर लंबी आवाज। तो बहुत अच्छी जानकारी लोगों के से हमें इनके बारे में मिली कि पहले क्या होता था कि लोग गांवों में रहते थे, गांवों से जाते थे, खेत के रास्ते से गुजरते थे, मेला देखने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो एक साथ निकला करते थे वो लोग। और एक बंदा कहीं बहुत दूर है, बहुत दूर है बैलगाड़ी में, उसने वहां से कुछ एक लाइन बोल दी, कुछ एक लाइन उसने गा दिया, फिर पीछे का कोई भी बंदा है जिसने सुना बैलगाड़ी पर चला रहा है तो उसकी एक लाइन सुनकर जो है उसका जवाब दिया करता था। फिर किसी और छोर पे कोई दूसरा बंदा होता था, उसने सुना, उसको जवाब सूझा, तो ऐसा फिर वो गाता था, तो उसको लमटेरा कहते थे। इसी से मिला हुआ है बम्बुलिया, वो भी लंबी लमटेरा का ही एक रूप है, उसमें देवी महिमा खासकर नर्मदा जी इन सबका जो जिक्र होता है उसके लिए मामला है। भाई चंग पैटर्न पे आप चलते चलिएगा।

0: थैंक यू।
1: वाह वाह क्या बात है। नरोत्तम जी बहुत बढ़िया आप गा रहे हैं। अगर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा गाया और जोरदार तालियां नानू जी के लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि ये जो पूरी कहानी मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड की कहानी थी इनके गाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर। आमंत्रित कर रहे हैं ममता वर्मा को, जो वैसे पहाड़ों पर हम जब सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बर्फ़ की बारिश में भीगना बड़ा सुखद लगता है, लेकिन वहाँ का जीवन कितना कठिन है ये हम में से शायद ही कोई सोचता है। लेकिन पहाड़ों का लोकगीत बहुत ही सुंदर है, बड़ी मिठास है। भले ही आपको समझने में कठिनाई हो, लेकिन मीठी आवाज़ में ममता वर्मा बहुत बढ़िया गाती हैं। तो ममता से हम उनसे कुछ पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी भी चाहते हैं। ममता, हम आप गाए इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमने सुना है कि उत्तराखंड जहाँ की आप रहने वाली हैं वहाँ का जीवन काफ़ी कठिन है और कमाई का जरिया बहुत कम है, तो वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो कमाने के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं। महिलाएं अपना जीवन यापन खुद करती हैं, खेती किसानी से लेकर जो भी काम होता करती हैं, और बड़ी निडर होती हैं। तो हम ममता से पूछते हैं वहाँ के जीवन के बारे में, बताइए कि जब पुरुष घर में नहीं होते तो डर नहीं लगता है वहाँ के? जो
2: नहीं, वहाँ की महिलाएँ जो होती हैं बहुत निडर महिलाएँ होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, कभी कभी भालू और बाघ से भी वो लड़ जाती हैं। नमस्कार, प्रणाम, पहलाद। मैं ममता वर्मा उत्तराखंड कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ। मैं आपके सामने जो गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उस गाने में ही एक लड़की और एक औरत का दुख पीड़ा जो होता है वो उस गाने में व्याख्यान किया है। ये प्रहलाद मेहरा जी ने ये गाना गाया है। एक लड़की के दुख और उसके पीड़ा, वो जो घर में काम करती है वो उस काम का व्याख्यान इस गाने में किया है।
1: तो वो गा के सुनाइए।

वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक हमने सुना है दर्शकों की ओर से फरमाइश भी आई है कि एक गाने पर आप नृत्य भी करती हैं, और वो नृत्य भी थोड़ा सा अगर आप चार लाइन भी गाते हुए सुना सकती हैं तो सुनाइए। और आपकी जो पोशाक है, वेशभूषा है, हम अपने दर्शकों को और अपने रेडियो के श्रोताओं को बता दें कि ममता वर्मा ने जो पोशाक पहनी है, बाकायदा उत्तराखंड की एक जो महिला होती है वहाँ की पोशाक पहन रखी है, जो बहुत खूबसूरत लग रही है।

0: वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति और नृत्य के साथ गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूरे सुर में, सुर के साथ और भाव के साथ आपने प्रस्तुत किया। ममता वर्मा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये थी लोक संगीत संध्या की विविध रंगी प्रस्तुति। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों ने और वहां उपस्थित दर्शकों ने मंच पर जैसे धमाल मचा दी, और इसके बाद वरिष्ठ उद्घोषक जयंत पात्रिकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
0: आखिर में दो लाइन चलत मुसाफिर मोह लियो रे, इस गाने पर सारे दर्शक खड़े होके नृत्य करेंगे और यहाँ पर मंच पर सारे कलाकार हम सब उसमें शामिल रहेंगे।
2: उड़ उड़ बैठी पनवनिया दो कनिया पनवा के सब रस ले लियो रे।

0: तो कन्हैया उड़ उड़ बैठे बजा जिया तो कन्हैया है उड़नी के सब बरस ले पिजड़े वाली मुनिया है उड़नी के सब बरस ले ली और पिजड़े वाली मुनिया। थैंक यू विविध भारती,
1: धन्यवाद।
0: मुंह से रिदम जिन्होंने बजाया मुझे तौफीक भाई की याद आ गई, एक जोरदार तालियां।
2: शैली जी, एक कमाल की बात यह है कि साज नहीं थे लेकिन इस बीच में ये नानू और जयंत जी ने जिस तरह से बीट बॉक्सिंग की है वो बहुत कमाल का था, बहुत ही गजब।
1: विविध भारती की ओर से आयोजित सृजन भारती के इस लोकरंग कार्यक्रम में आज की इस शानदार प्रस्तुति के लिए विविध भारती परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। इस विविध रंगी शाम में शामिल होकर और उसमें नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए दिल से आप सभी का विविध भारती परिवार आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं हमारे नगर सेवक शिवा शेट्टी जी के प्रति, हरीश छेड़ा साहब अध्यक्ष बोरीवली सांस्कृतिक केंद्र, ये ऑडिटोरियम हमें उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। राजेश बेलदार जी साहब हमारे निदेशक अभियांत्रिकी विविध भारती के, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताड़े साहब और सभी इंजीनियरिंग के साथियों का, विशेषकर मंगेश सांगड़े जी और विनायक रेणके जी सक्रिय सहयोग देने के लिए हम उनके आभारी हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साउंड सिस्टम के लिए डीजे जस्सी और उनकी टीम का आभार और हमारे आज के कलाकारों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, ममता वर्मा, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नेहा जी और नरोत्तम बेन जी, आप सभी का इस लोकरंगी कार्यक्रम में आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। संगत करने वाले सभी साथी सिद्धार्थ मेस्ता, सुधीर जंगम साहब और बाकी साथी थे उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का एक बार फिर से हम अमूल्य वक्त देने के लिए और बहुमूल्य वक्त देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
3: रामकुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
3: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
3: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ any GI problem is education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है आंधी, गुलजार के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं ब्लैकमेल फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुहाना सफर, इस फिल्म का गीत आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की बनाई धुन पर, और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजें हैं, युगल स्वर हैं। मजू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत। शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है। कन्यादान फिल्म से ये गीत है।

प्रेम कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आजी बर्मन ने संगीतबद्ध किया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम यादों की महफिल, ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस कुछ ही पलों में हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ आपके सुरीले सफर की हमराही बनेगी आपकी ये साथी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, आज की इबारत तो आपने पढ़ ही ली है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यार से पढ़िएगा। प्यार से पढ़ा ना आपने? मुझे यकीन है कि बहुत उलझाया नहीं होगा आज की इबारत ने आपको, क्योंकि बहुत ही सामान्य शब्दों से सरल भाषा में कविता के रूप में ये इबारत हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तैयार की है। हाँ तो हम सफर पर जा रहे हैं ना, तो उलझन में क्यों फंसाना? प्यार से लिखा है और प्यार से पढ़ा है, तो प्यार से ही इस सफर को तय भी तो करेंगे हम और आप मिलकर साथ में। तो तैयार है ना आप सभी मेरे साथ आज के इस सफर पर जाने को? हाँ, मैं पहली बार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब होने जा रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे सभी प्रिय श्रोताओं ने मुझे आज पहली बार सुरीला सफर शुरू करने की बहुत शुभकामनाएं बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ दी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इसके लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे भी अपना साथी स्वीकारने के लिए।

कुछ साथियों ने तो मुझे पायलट घोषित किया है। जी हाँ, क्योंकि हम सुरीला सफर लेकर जो चलने वाले हैं ना, इस सफर की पायलट उन्होंने मुझे बना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस तरीके से इस नाम से नवाजा है। और देखिए कुछ श्रोता मुझे किस तरह से आज मेरा स्वागत करते हुए हमें संदेश भेज रहे हैं कि देश की सुरीली धड़कन पर पहली बार जब नए उद्घोषक की जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये पूजा जी तो नहीं। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीला सफर लेकर आ रही हैं तो स्वागत। और विविध भांति का प्रसारण हवा के संग संग जब होता है तब खुशियां ही खुशियां दामन में समा जाती है, जिया बेकरार होने के साथ बहार छा जाती है, भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं, बाग की हर कली खिलने लगती है, तब ये गीत गूंज उठते हैं। कुछ गीतों के बारे में उन्होंने कहा, जैसे कि इन हवाओं में इन फिजाओं में आजा आजा रे तुझको विविध भांति का प्यार पुकारे। क्या बात है,

तो श्रोताओं, सबसे पहले आपके लिए हम इबारत भी तो पढ़कर सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हाँ, आपने तो पढ़ ली है, पर फिर भी हम आपको पढ़कर जरूर सुनाएंगे। कुछ श्रोता जो कुछ देरी से जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, है ना? तो पढ़ देते हैं आपके लिए हम आज की इबारत। प्यार की गली में जब से तेरी आहट उतरी है, हवा भी गीत गुनगुनाए, पानी भी कहानी सुनाए, आंख चुराए, फिरती हूं मैं सब

से तेरे नाम पर। आंचल में भर ली है मैंने खुशियां इस संसार की, कलियां खिला दी तूने मेरे गोरे अंग में, जियरा ने तेरी यादों में कैसी सांवरी महफिल सजाई है। दो मन थे जो दूर दूर तक अपनी राहों में भटके, आज मोहब्बत ने दोनों की एक डोर बंधाई है। आग ओढ़कर पिघले जवानी, चांदनी भी शर्मा जाए, किसी के होठों पर मेरा नाम 100 बार उभरा है। आंखें चार हुई तो जैसे थम गई पुरवैया भी, तकदीर ने चुपके से प्रेम दीपक वारा है। जा रे जा कहकर भी तुझको जाने कब जाने देती हूँ, हर इनकार के पीछे मैंने एक इकरार उतारा है। संगमरमर सा चेहरा तेरा, पानी सा निर्मल मन है, हवा ने तेरी खुशबू को हर सू आकर बिखेरा है। हम जोली छेड़ रहे हो क्यों दिल के कोमल तारों को, इंतजार की लंबी रातों ने सपना सवारा है। सीने के सुर्ख बाग में अब तेरी चाहत खिलती है, हर पंखुड़ी पर तेरे नाम का रंग गहरा है। प्यार की गली से होकर जो तेरे दिल तक पहुंची हूं, अब मेरी हर धड़कन ने बस तुझको ही पुकारा है।

जी हाँ श्रोताओं, ये थी आज की इबारत एक कविता के रूप में, प्यार से ओतप्रोत। हाँ, प्यार से भरी बातें, प्यार से भरी है इबारत। एक स्त्री का मन जब प्यार से भर जाता है तो हवा, पानी और मौसम कैसे उसे सताने लगते हैं, बस हर पल मिलन का इंतजार रहने लगता है। अनछुआ सा प्यार जो सिर्फ नजरों से ही ऐसी चुवन दे जाता है कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, मन बस में नहीं रहता, बदन का तार तार पिघला देता है। वैसे प्यार तो है ही इस इबारत में, पर साथ ही क्या और है जो हमें प्यारा है, जिसके आने का हमें इंतजार है अब बेसब्री से, है ना, जिसके बिना हमारी अगन कम नहीं होने वाली है। आप बताते चलिए, सुरीले सफर का सुरीली शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे सुनकर आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने पूछा है कि वो क्या है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक श्रोता कह रही है कि प्यार की गली बहुत सकरी होती है, एक बार व्यक्ति पहुंच तो जाता है लेकिन वापस आना मुश्किल होता है, और कभी वह आ भी गया तो इश्क में डूबी ठंडी हवा उसे पुरानी आहट लिए चुभने लगती है, उनकी प्रेम कहानी आंखों द्वारा खारा पानी बन बहने लगती है, अपने आप से आंखें चुराने लगते महबूब के नाम का आंचल ओढ़ फिरते हैं, फिर चमन में कलियां खिले या कांटे मिले उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उन्होंने एक गाना भी हमें यहाँ पर बताया है, देखते हैं कि क्या वो आगे इस सफर में शामिल होने वाला है। फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड ये जो है हम गाना आपको सुनवाने वाले हैं, उसी शब्द पर आधारित। जी तो, लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख भेजिए। और इस फिल्म में ये एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो कि अभिनेता और जया भादुड़ी अभिनेत्री हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है।

जी हाँ साथियों, पानी रे पानी, इसी का तो इंतजार है हम सभी को, बिल्कुल बेसब्री से, है ना। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, वैसा ही तो रंग है जिसमें भी ये घुल जाता है, मिल जाता है, बस वैसा ही हो जाता है। शरबत में घुल जाए तो वैसा, भूख को दबा के और प्यास बुझाए ऐसा, प्यास में प्यार में पानी प्यार के तरह ही बन जाता है। तभी तो पानी के बिना प्यार की बातें ही अधूरी होती हैं। और हम सभी को प्यारा है ये पानी, और पानी शब्द हमारी इबारत में हमने शामिल किया था, है ना। और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें लिख भी भेजा था ये गीत, पानी रे पानी, बिल्कुल सही। जो कब आएगा, कितना इंतजार है पानी का हमें, बरसात का पानी जो तपती धरती को ठंडा कर जाएगा, हमें शीतलता दे जाएगा। बस हम कर रहे हैं पानी का इंतजार। श्रोताओं, आप बताते चलिए, हम आपके संदेशों को शामिल करते जाएंगे। बहरहाल आपका एक आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सुरीला सफर का कार्यक्रम हम सफर बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और जिंदगी की ट्रेन में अब हम काफी आगे की डब्बे में सवार हैं, जहां प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने की चीज भी नहीं रह गई। वो रह गुजर, वो कश्मकश, वो जज्बात, वो अफसाने, वो अनसुलझे सवाल, वो अनकहे इजहार अब हमारे लिए बेमानी है। ये सारी बातें हमारे युवा श्रोताओं के लिए हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। वैसे ये गाने सुकून देने वाले हैं जो आज प्यार से भरे हुए हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इन जज्बातों को भूल जाएं। आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आज वो याद आने वाले हैं, सारे प्यार भरे लम्हे जिन्होंने आपको कभी गुदगुदाया था।

जी श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, और हमने एक और सवाल पूछा, इस फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुड़ी को ऐसा उनका क्या रिश्ता है और ऐसा क्या है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। जी हाँ, प्यार ही तो है वो रिश्ता जो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है। और वाद्य यंत्रों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाया जा रहा है, और कितना खूबसूरत गीत हमें ये मिला है ना।

तो हम आपके संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं। जी, उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहां प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने।

ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती हैं कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई है कि जैसे ही जरा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो, कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है। जब तुम पुकारते हो तुम्हारे दिल की गली तक पहुंचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूं मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन के सबसे गहरे और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है, फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जा री जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथियों की आवाजों में इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, इस गाने में जो आपको बताना है वो ये प्रश्न है कि ये हसीनाएं किसकी सवारी कर रही हैं।

और श्रोताओं, ये भी बताइए कि क्या आप आज के समय में साइकिल का उपयोग करते हैं। साथ ही साझा कीजिए आपके प्यार के लम्हों में साइकिल ने क्या योगदान दिया।

जी श्रोताओं, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

साइकिल उस जमाने में सिर्फ सवारी ही नहीं थी, ये प्यार के लम्हों की साथी भी बनती थी। साइकिल पर प्यार के लम्हों को ज्यादा जिया जा सकता था, है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी बजाय, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, साइकिल पर तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के जमाने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा के। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसकी जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया

एक श्रोता कहते हैं कि पूरी भारत में प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी ही कविता की कुछ लाइनें यहां पर हमें लिखकर भेजी हैं। हाँ, और इसका जवाब भी आ गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है, क्या बात है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

यहाँ भी गीत में बारिश है, पानी है, प्यार का इकरार है। पानी, घटा, हवा सब कैसे प्यार के साथ जुड़ जाते हैं, ये हमें हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से पता चलता है।

0: एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी रे पानी गीत से आगाज होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफर को, चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री हैं, यानी स्त्री जो प्यार से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं।

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल है हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती हैं और मन की बातों को उनके साथ सुर में पिरो रही हैं। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत

आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतजार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बड़ा चला जाता है। तो हाँ जी, देखिए उसके लिए तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएँ।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनवाया लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी। प्यार के एहसास से लबरेज वो बातों को याद कर रही हैं प्यार की, और अपनी खुशी जता रही हैं।

हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजते जा रहे हैं, उनके कुछ गीत इस इबारत के शब्दों के साथ उन्होंने पहचाने हैं और कुछ नहीं पहचाने हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना उनसे मिली नजर, लता मंगेशकर ने इसे गाया था, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं

लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना उनसे मिली नजर, लता मंगेशकर ने इसे गाया था, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं उसे आप बताइए कि इसमें जो अभिनेता राजकुमार ने दुपट्टा बांधा है उसका क्या रंग है।

जी हाँ, हीर ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझे से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे हैं आनंद बख्शी के बोल एसडी बर्मन का संगीत। हीर रांझा फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसे लिखा था कैफी आजमी ने, मदन मोहन का संगीत था।

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा। आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तारीख है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यक होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज होगा। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में कहा कि पंचायत स्तर से लेकर जिला अध्यक्षों तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के लिए पार्टी के सभी प्रतिनिधि पटना पहुंचे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो वाले सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपये की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी कीमत 1011 रुपये से बढ़कर 1040 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपये से बढ़कर 386 रुपये हो गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। श्री सरावगी ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत में गैस के दाम अनियंत्रित नहीं हुए हैं। शेष समाचार

0: एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय मुंगेर दौरे के क्रम में आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संघ के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर से आयोजित शिक्षा वर्ग में शामिल होंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य में 16 जून के बाद प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मानसून सामान्य गति से बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के पूर्वोत्तर भागों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। इधर मौसम विभाग ने बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिले के कुछ भागों में अगले 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विक्रमशिला सेतु पर निर्मित बेली ब्रिज से परिचालन आज से शुरू हो गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 3 मई की रात पुल का एक स्लैब टूटकर गिर जाने से इस पुल से आवागमन ठप हो गया था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार कांग्रेस काउंसिल की 9 सीटों के लिए होने वाले 2 साला इंतखाब और 1 सीट के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए कल पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। उम्मीदवार 11 जून तक पर्चे नामजदगी वापस ले सकते हैं। ज़रूरी होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को पोलिंग होगी और इसी दिन शाम को वोटों की गिनती होगी। इधर एनडीए की हलीफ जमात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार कांग्रेस काउंसिल की 1 सीट के लिए पार्टी के कारगुजार रियासती सदर अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने 4 और जेडीयू ने भी 4 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त पहले ही जारी कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रियासती सदर ओहदे के लिए आज इंतखाब होगा। पार्टी सरबराह उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में कहा कि पंचायत सतह से लेकर जिला सदूर तक का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है। आज रियासती सदर के इंतखाब के लिए पार्टी के सभी नुमाइंदगान पटना पहुंचे हैं। सेहत व खानदानी फलाह के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए महफूज और शफाफ खाने के तई हुकूमत के अजाइम दोहराए हैं। आज खुर्दनी अशिया के आलमी दिन के मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने शहरियों से सेहतमंद खुर्दनोश की आदतें अपनाने और सेहतमंद व खुदकफील भारत की तामीर में अपना ताउन देने की दरख्वास्त की। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा किया गया है। अब पटना में इसकी कीमत 1011 रुपये से बढ़कर 1040 रुपये फी सिलेंडर हो गई है। वहीं 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 375 रुपये से बढ़कर 386 रुपये हो गई है। नई शरहें फौरी असर से नाफिज हो गई हैं। हालांकि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। बीजेपी के रियासती सदर संजय सरावगी ने कहा है कि आलमी बहरान के सबब भारत समेत पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जनाब सरावगी ने पटना में कहा कि वजीर आजम की कोशिशों और मुल्क की मजबूत मईशत के सबब दीगर ममालिक के मुकाबले भारत में गैस की कीमतें बेकाबू नहीं हुई हैं। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत 3 रोजा मुंगेर दौरे के दौरान आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट

0: पर वजीर आला सम्राट चौधरी, संघ के अहदेदारान और दीगर सीनियर लीडरान ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। जनाब भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शुमाल मशरकी इलाकों की जानिब से मुनक्किद तालीमी क्लास में शामिल होंगे। जुनूब मगरबी मानसून के रियासत में 16 जून के बाद दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून औसत रफ्तार से खलीज बंगाल के बेशतर हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। महकमा ने बताया कि आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान मुल्क के शुमाल मशरकी खित्तों में मानसून पूरी तरह सरगर्म हो जाएगा। रियासत में गर्दाबी गर्दिश के असर के सबब मौसम में तब्दीली की सूरत हाल बदस्तूर कायम है। मौसम साइंस सेंटर पटना के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी इम्कान है। इधर महकमा मौसमियात ने बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिले के कुछ इलाकों में आइंदा 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विक्रमशिला सेतु पर तामीर बेली ब्रिज से आमदोरफ्त आज से शुरू हो गई है। सड़क तामीरात के वजीर इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी समेत कई अहदेदारान और अवामी नुमाइंदगान मौजूद थे। काबिले जिक्र है कि 3 मई की रात पुल का एक स्लैब टूट कर गिर जाने से इस पुल से आमदोरफ्त पूरी तरह ठप हो गई थी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग एनडीए परीक्षा के आलोक में कुल 394 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.upsc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी।

आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
1: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
3: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट

0: में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर

0: भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, वक्त फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल उद्यानवी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत साहिल लुधियानवी के बोल हैं संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और यह अगला गीत दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में जीएल रावल ने इस गीत को लिखा। सोनिक ओमी का संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बद किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राज। शमीम जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में हम करते हैं शामिल आपके उन पत्रों को जिनमें आप लिख भेजते हैं हमें आपकी मन चाहे गीत। लीजिए हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मनचाही गीत कार्यक्रम में लीजिए अब अगला खत। हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मला वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण। इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत। गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू। लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। समीर के बोल, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से, राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उन्हीं की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मर्जू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।
4: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है? पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी, हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का।

इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से, और इन्हीं के साथ ऊपर कोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्लू डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल उमेश सरोज, आरती रेखा रितिका, रिचा स्वीटी सागर, रिया रीत ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का, और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने, और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरिसी, नईम इदरिसी और नदीम इदरिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खां। वालिये का नाल राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खां आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
3: कहिए कैसे आड़ा हुआ, कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूं।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: तेरे की हार हो गई, जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना आयुब?
2: जी आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
3: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को नाउम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
3: है? हाँ जरूर जरूर। और लक्ष्मण, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
4: जी हजूर।
5: सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
5: हजूर ने मैंने याद किया है।
3: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।

0: सोपो जी सोपो, ये हैं नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
1: साड़ी मदद?
0: बस यही कि आप मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
1: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान की तैयारी करता हूं।
0: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूं। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
2: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के मानित ही रखूंगा।
0: जी जी, यही मैं चाहता हूं। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
2: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
0: और जाओ, गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
3: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
4: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम खादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
3: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
4: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
3: उफ दादी जान,
4: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारहा दखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
3: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
4: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
3: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
4: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में न आए।
3: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
4: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
3: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
4: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीस की तरह।
3: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
4: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
3: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बज़ाब कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।
5: जो हुक्म आ लीजा। आलम बना, गुलाम कादिर हाजिर है।
3: बदसात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाए और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल कि तू शाही हरम में।
6: हुजूर, हुजूर, रहम।
3: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हराम खोर की कोड़ों से खाल उधेड़ दी जाए।

उफ, कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हादसे गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीरुल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहनशाह को मजबूर कर दिया। तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा। क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। कोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमल

0: नामवर, किसने भेजा है ये खत?
1: हुजूर, ये खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है वो खत। अजीज
2: नवाब गुलाम कादिर, बात तस्लीमात के तहरीर है कि किले और हरम की हालत फिलहाल बहुत नाजुक चल रही है। किले में हमारी बार बार तौहीन होती है, बादशाह अक्सर बदसलूकी करने लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजी ताकत से किले पर कब्जा कर लो और शाह आलम सानी को तख्त से हटाकर बेदार बख्त को तख्त नशीं कर दो तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही तुम्हें 12 लाख रुपहली सिक्के बतौर इनाम अता करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अपना मददगार ही समझो। किले तक पहुंचने के बाद जो कुछ इमदाद हम और हमारे वफादार खादिम कर सकेंगे जरूर करेंगे।
0: तो ये खत बादशाह की दादी जान और बेगम महल साहिबा की तरफ से है। ये वही जमानी बेगम है जिन्होंने मेरे कोड़े लगवाए, जलील किया और आज मुझसे इमदाद की तालिब है। कहीं कोई दगा तो नहीं? नहीं, नहीं, कोई दगा नहीं। इतने दिन किले में रहा, बेगमों की मुहरें अच्छी तरह पहचानता हूं, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हर तरफ हमारी फतह हो रही है, हमारा सितारा बुलंदी पर है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना हमारे हक में होगा।

0: मियां शमशेर खां, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगाकर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: उफ, हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मन बहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक दो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेहयाबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह। अब किसी को भी मैं बच्चों के घरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा। और

0: लाला जी, गुलाम कादिर किले में दाखिल हो गया है। ये मैंने तहकीक कर लिया है कि शहनशाह से दस्तखत कराने के लिए एक दस्तावेज तैयार हो रही है। शायद कादिर को मीर बख्शी का ओहदा और पुश्तैनी खिताब दिया जाए। और उधर जहाँ बना हरम में जा चुके हैं।
1: मियाँ शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं जाकर जहाँ पना को आगाह करना होगा।
0: हुजूर, बादशाह सलामत आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप किसी भी वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस गुलाम कादिर से उन्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
1: देखो, मैं जाता हूँ। अगर वक्त मिला तो दस्तखत कराने के बहाने कादिर से ही वह दस्तावेज हत्या लूंगा, तब शहनशाह को आगाह करा पाऊंगा।
2: कहिए लाला जी, कैसे आना हुआ?
1: जहां अपना गुस्ताख ही माफ हो, वैसे बंदा इस वक्त हुजूर को कतई जहमत नहीं देता, मगर जरूरत कुछ ऐसी।
2: बोलो लाला जी, क्या बात है?
1: हुजूर, गुलाम कादिर किले में दाखिल।
2: हाँ हाँ, वो हमसे मिल चुका है।
1: जहां अपना वह एक दस्तावेज पर दस्तखत कराना चाहता है। मैंने दस्तखत कराने से पहले उसे पढ़ने की गुस्ताखी कर ली है।
2: पढ़ लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
1: अलीजा, मुझे तो इसमें दगा का अंदेशा हो रहा है।
2: दगा? कैसी दगा? देखें क्या है दस्तावेज में। लेकिन इसमें दगा क्या हो सकती है? ये सब बातें तो वो पहले ही तय कर चुका है। लाला जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुज़िश्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलमपना, वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर वो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है, जहां पना के हुक्म के देर है। अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
2: लाला शीतलदास, ये हमारी जानिब से दगा होगी। हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ दगा, तवारीख के सफे लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए, ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को दे दें।
1: जी बहुत अच्छा।
3: जनाब ने कैसे याद किया?
2: कादिर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बालाए ताक रख दी।
3: जनाब, अभी हुजूर का गुस्ताखी से साफ का पड़ा ही कहा है। गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
2: क्या कहा?
3: हुजूर, ये गुलाम कहने में नहीं करने में एतकाद रखता है। गुलामों, देख क्या रहे हो, इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
2: नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
3: नहीं, लेकिन जरा ठहरो, इसे भी बेदार बख्त की तख्त नशीनी का चश्मदीद गवाह बन जाने दो और इसकी आंखें निकलवा दो। आहा।

0: मंजूर के बच्चे नालायक लासबमान कहां छुपा रखा है?
1: हुजूर, मैंने तो आपकी मदद ही की है।
0: रक्तार्थ देता है कि छुरा पार कर दूं।
1: अभी सब देता हूं हुजूर, अभी सब देता हूं।
0: ला निकल।

0: से भला ये कैसे हो सकता है कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना।

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है। ये बला कैसे आन तक की?

0: बीसा जी, इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरदार इंगले,
1: श्रीमंत,
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत, यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान, हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

0: जहां पना किले की ये दुर्दशा।
1: बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया।
0: जहां पना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने। हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीहे, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है।
0: हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शें, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना, सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख कान नाक होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत में भेजी।

0: सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख कान नाक होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
1: इंग्लिश, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ये उस कमीने की आंखें हैं, ये कान, हाँ दोनों कान, ये नाक, ये उंगलियां, वाह ये शायद उसके होठ हैं। वाह बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
0: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
1: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी इसी वक्त।
2: नहीं
0: सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
1: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जानें बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
1: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
3: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
1: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधोजी सिंधिया भी शामिल है।

लाला शीतल दास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था आपके घर का, क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
2: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा

0: ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज़ उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीज़ें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहाँ पर शहादत हुई रेजांगला में, और वो चीज़ से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं, रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहाँ पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहाँ चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए। बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है। बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद, फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे।
1: जी
0: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में।
1: जी
0: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहाँ पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी।
1: कुर्बानी
0: तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल
0: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहाँ पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक
0: तो
1: है
0: मैं नहीं चाहता हूं कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है।
1: जी
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है अब सुवीनियर में देना है लाइंस, तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है।
1: जी
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है।
1: अच्छा
0: तो फिर ठीक है आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ?

0: हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में
1: बाद
0: हुआ,
1: में हुई
0: ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने।
1: दिल्ली में।
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे, एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक
1: अच्छा।
0: ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने
1: पकड़ने
0: में,
1: में। हाँ।
0: और चितलकर का और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां
1: हाँ।
0: गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना।
1: जी।
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए।
1: जी।
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा
1: लोग
0: पर, वीरों ने है प्राण गंवाए। लोग एकदम सुनना
1: स्तब्ध रह
0: शुरू
1: गए।
0: किया कि
1: हाँ।
0: ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो।
1: था
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है
1: जी।
0: सबको, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: उनके मन में भी ग्लानि बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज़ को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानि थी,
1: जी
0: गिल्ट फीलिंग।
1: जी
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, ये
1: अच्छा
0: लिखा किसने है।
1: जी।
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो
1: जी।
0: छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है। हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में हमारे, देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं,
1: जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी।
0: लक्ष्मीकांत जी।
1: जी
0: वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है, तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में,
1: अच्छा।
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: सुना। तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना। इट वॉज एब्सोल्यूटली, मैं तो कहूं कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी,
1: जी।
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, और उनको ये कहते हुए सुना,
1: सुना।
0: ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूं।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए, और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा, और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए,
1: जी।
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा, ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है, अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि

0: गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं,
1: जी
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी,
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो
1: जी
0: जाते थे दिल्ली,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है,
1: कि जो होता है अच्छे
0: अच्छा
1: के
0: होता
1: लिए
0: है।
1: होता है जी
0: उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा इसी गीत को
0: इसी गीत
1: आप
0: को।
1: सुनाएं।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूं, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूं, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया, और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया,
0: जी
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है।
1: जी
0: ए मेरे वतन के लोगों की
1: लोगों
0: जो भी
1: रॉयल्टी आई।
0: रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को।
1: और
0: वो
1: एक
0: मेरे पिता की इच्छा थी, तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, ऐ मेरे वतन के
0: जी
1: लोगों,
0: जरूर
1: जरा आंख
0: जरूर।
1: में भर लो पानी।

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरी वतन की लोगों।
1: जी
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी? आप किस तरह का माहौल लगता था? कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी
1: तो ये नहीं है कि कभी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे,
0: जी
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे,

0: दरवाजे के पास, और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे, हम लोग
1: जी
0: खड़े। तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे, और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट दे के रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
1: जी
0: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे हमारे घर पे, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
1: जी
0: काफी आते थे, जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए,
1: जी
0: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
1: जी
0: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर,
1: बिल्कुल
0: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे, ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे।
1: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू
0: हाँ,
1: था।
0: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो हम मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था? न्यूज़, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो चार पांच अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
0: हाँ, अभी अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार,
1: जी
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे, और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये छह अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी,
1: इतनी भाषाओं का
0: इतनी भाषाओं के हमारे वहां अखबार
1: आते
0: आते
1: थे और
0: थे
1: उसे पढ़ा
0: और
1: जाता था।
0: आज भी आते हैं, वो मैंने
1: जी
0: बंद नहीं किए।
1: जी
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं
1: नहीं
0: होती।
1: होती।
0: बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 6:45 बजे का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में
1: जी
0: आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था।
0: हाँ,
1: जी
0: एक नहीं, दो तीन रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना, तो रेडियो उनका साथी था। मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था, तो हमारे घर में तीन अलग अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी,
1: अच्छा
0: जैसे मैंने कहा वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है, तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में।
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था और
0: हाँ,
1: हर कण कण
0: तो
1: में वो देशभक्ति
0: ये
1: का
0: जो
1: जज्बा था।
0: जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ, और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह, मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।

0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का। अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पे भी कुछ डालो,
1: वाह
0: अरे ओ रोशनी वालो।
1: वाह, क्या बात है। महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है
0: जी
1: ये,
0: जी
1: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को। गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।
2: उठ

0: दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं, हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए, ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी, और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसे, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: फिल्मी
1: सबसे
0: दुनिया में
1: बढ़िया,
0: रहते हुए भी,
1: रहते हुए
0: उस
1: भी।
0: माहौल में रहते हुए भी।
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा
0: और
1: वो।
0: किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से, कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह, या गा के
1: हाँ
0: बताइए?
1: हाँ नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहिरी ने।
0: जी
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी, मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे, जो आपको पसंद हो,
1: हाँ हम
0: जो
1: अभी,
0: फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था कविताओं का।
1: हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ। तो उन्होंने, मैंने जैसे पहले कहा था कि आज़ाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आज़ाद, तब कविता लिखी थी, उसी दौरान उसके बाद में जब हमको आज़ादी मिली तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लहलही विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब
0: वाह
1: नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि
0: जी
1: हमको
0: जी
1: उस वक्त आज़ादी मिली
0: आजादी मिल
1: थी।
0: गई।
1: और आप अगर सुने, एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: भाईचारा, यही
1: ये
0: पैगाम हमारा।
1: वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं,
0: जलाएं,
1: छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क
0: फर्क न
1: नहीं रह
0: रहने
1: जाए।
0: पाए।
1: तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश
0: पॉपुलर
1: के
0: हुआ
1: लिए
0: था
1: पॉपुलर है, और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा
0: ये
1: और कुछ नहीं,
0: यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते
1: ठुकरा नहीं
0: हैं,
1: सकते।
0: भुला नहीं सकते हैं, झुठला
1: हाँ
0: नहीं सकते
1: हाँ
0: हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम
1: ये
0: सुन
1: गीत
0: लें
1: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी, तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी,
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंधेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से। मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारी पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति
1: मिली
0: का
1: हमको।
0: जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी जी
1: और लेकिन लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
0: अच्छा,
1: जब मिल गई आजादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
0: बहुत बड़ा सवाल।
1: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
0: इस देश को रखना
1: मेरे बच्चों
0: बच्चों
1: संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से? और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था।

0: आगे क्या होगा?
1: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं, उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
0: हर एक लाइन सुनिए आप
1: जी।

0: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही है और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाक्या हुआ था
0: जी,
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलता मैं कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ, संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपिनियर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं प्रदीप जी के साथ काम कर सकते।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत।

0: भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुग्यानो ने की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, पोत परिवहन, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण और उर्वरक जैसी द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्ष के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारियों तथा वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा के बारे में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन आज पूरे हो गए। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले शनिवार को ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट गोस्वामी का अंतिम संस्कार किया गया। लेफ्टिनेंट गोस्वामी का राजौरी जिले में अभियान के दौरान एक गहरी खाई में गिरने से निधन हो गया था। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के

0: त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। न्यू चंडीगढ़ में भारत के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। संध्याकालीन प्रसारण सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। विज्ञान एवं पर्यावरण ये साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:00 और 6:05 पर भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा आकाशवाणी के पटना केंद्र से, जिसे हमारे केंद्र से रिले किया जाएगा। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर आप सुनेंगे शाम 6:10 पर।

6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। 7 बजे प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे ममता का आंचल और गुड इवनिंग रोहतास। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम इसका प्रसारण होगा 7:15 पर।

प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए हम आपको लेकर चलेंगे 7:25 पर अपने आकाशवाणी के पटना केंद्र, और 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। शाम 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसका हम अनुप्रसारण करेंगे। ये प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा, और महफिल गज़लों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर।

9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस रंग और चित्रपट तराने, हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर।

रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी समाचार का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जिसे हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदन के अंतर्गत कुछ भक्ति गीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको हम सुनवा रहे हैं एक देवी गीत। आवाज़ है तृप्ति शाक्या की।

कार्यक्रम का अगला भजन आपको सुनवा रहे हैं कमल बरोट की आवाज़ में, यह कृष्ण भजन है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: वंदन कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरुण कुमार की आवाज में एक शिव भजन।

श्रोताओं, भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदन के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कुछ भक्ति गीत। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं राहुल जोशी की आवाज़ में एक हनुमान भजन।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण।

0: जेल जा सकता है, फिर वही अफेंस कॉग्निसेबल और नॉन बेलेबल अफेंस है। उसके अलावा 5,000 रुपया तक जुर्माना दोनों का प्रावधान है। फिर बार बार अगर अपराध हैबिचुअल अफेंडर है उनके ऊपर पर वो ये अफेंस ये पनिशमेंट तो बढ़ा सकते हैं। फिर वन संरक्षण अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के आधार पर वन क्षेत्र में अगर गैर वानिकी का काम बिना परमिशन जो भी करते थे, सरकार भी करते थे, अगर प्राइवेट एजेंसी भी करते थे, उसके वजह से उसके लिए उसको रोकने के लिए ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया है।
1: जी श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से डीएफओ रोहतास स्टेलिन फिडल के साथ अर्चना की बातचीत। डीएफओ महोदय, अब अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
0: हम एक चार पॉइंट हम करना चाहते हैं। ये धरती हमको सब कुछ देते हैं, लेकिन हम उसको क्या दे रहा हूँ अभी, ये हम सब सब लोग सोचना पड़ेगा।
1: जी
0: उसकी वजह से एक चार मैसेज है, एक पेड़ जरूर लगाइए, फिर और उसका फायदा आप लोग एंजॉय कर सकता है। दूसरा है जल का संचयन करें, वाटर कंजर्वेशन तो बहुत जरूरी है। तीसरा है तो प्लास्टिक का बहिष्कार करें, प्लास्टिक का मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बोल रहा हूँ, उसका इस्तेमाल पूरे तरह से बंद करना पड़ेगा।
1: जी डीएफओ रोहतास स्टेलिन फिडल कुमार जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ऑल इंडिया रेडियो सासाराम को भी मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।

श्रोताओं, सूरज की तपिश हो या दोस्तों की मस्ती, गर्मी का अपना अलग ही रंग है। छायादार दरख्त के साए में सुस्ताना, आइसक्रीम से गले को तर करना, काले चश्मे की रौनक और शाम के अंधेरे में टहलना कितना मज़ेदार होता है। तो लुत्फ़ उठाइए मौसम का और सुनिए गीत।

श्रोताओं, हमारा आज का यह अंक आपको कैसा लगा अवश्य लिख भेजिएगा, लेकिन आज के इस अंक से अर्चना अब लेती है विदा। नमस्कार। स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी सासाराम से संध्या 7 बजे रविवार के दिन जरूर सुने कार्यक्रम ममता का आंचल। साथ में होंगी IVF विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा चखैयार।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण। आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत। हम आपको सुनवा रहे हैं वंदना कुमारी की आवाज़ में यह गीत।

0: आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत FM 103.4 MHz पर। आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। शाम के 6:05 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।
1: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ दिव्या से भोजपुरी में समाचार सुनी। बिहार विधान परिषद के 9 गो सीट पर होखे वाला द्विवार्षिक चुनाव और 1 गो सीट खातिर होखे वाला उपचुनाव खातिर काल नामांकन दाखिल करे के अंतिम दिन बा। प्रत्याशी लोग 11 जून तक अपन नाम वापस ले सकेगा। लोग जरूरी पड़ला पर इस सीट खातिर 18 जून के वोट डालल जाये और वही दिन सांझ के मतगणना हुई। इन्हें एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार विधान परिषद के 1 सीट खातिर पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी के उम्मीदवार घोषित कर ले बा। भाजपा 4 और जदयू भी 4 गो उम्मीदवार के नाम के लिस्ट पहले ही जारी कर दे ले बा। तेल कंपनी सब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दे ले बा। 14 किलो वाला सिलेंडर के दाम में 29 रुपया के वृद्धि कल गई बा। अब पटना में एक कीमत 1011 रुपया से बढ़ के 1040 रुपया प्रति सिलेंडर हो गई बा। उन्हें 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर के दाम 375 रुपया से बढ़ के 386 रुपया हो गई बा। नया दर तत्काल प्रभाव से लागू हो गई बा। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में कोनो बढ़ोतरी नहीं खे कल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय महिला फुटबॉल टीम के सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीते पर बधाई देले बाड़न। सोशल मीडिया पोस्ट में वो कहलन कि टीम पूरा टूर्नामेंट में कमाल के खेल देखवला। श्री मोदी कहलन कि ये जीत से आए वाला समय में लड़का लेकिन के फुटबॉल खेले के प्रेरणा मिली। बता दें कि भारत काल गोवा के मडगांव में खेलल गए फाइनल मैच में पिछला चैंपियन बांग्लादेश के 3-1 से हरा के रिकॉर्ड 26वीं बार ई खिताब अपन नाम कैले बा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्य खातिर सुरक्षित और साफ सुथरा भोजन के प्रति सरकार के संकल्प के दोहरावले। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन लोग से स्वस्थ खान पान के आदत अपनावे, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग करे के अपील कैले। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्नपत्र के कथित लीक होके अब बेचे जाए के दावा के साफ खारिज कर ले बा। एनटीए कहलस कि सब छात्र और उनके परिवार के परेशानी के फायदा उठाए वाला संगठित नकलची गिरोह के काम बा। एजेंसी बतावलस कि वैसन पोस्टन के पहचान करके ओकरा से जुड़ल प्लेटफॉर्म के खिलाफ तुरंत कड़ा एक्शन लेवे के चेतावनी दे ले बा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कहले बाड़े कि वैश्विक परिस्थिति के कारण भारत के साथे साथे पूरा देश में तेल और गैस के दाम बढ़ रहा बा। श्री सरावगी पटना में कहले कि प्रधानमंत्री के प्रयास और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के चलते दोसर देश के तुलना में भारत में गैस के दाम बेकाबू नइखे भइल। विक्रमशिला सेतु पर बनल बेली ब्रिज से परिचालन आज से शुरू हो गई। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र एकर उद्घाटन कैले। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथे साथे अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि लोग मौजूद रहे। बता दें कि बीतल 3 मई के रात के पुल के 1 गो स्लैब टूट के गिर गए रहे। इस पुल से आवागमन ठप हो गई रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के मुंगेर दौरा के सिलसिला में आज पटना पहुंचले। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संघ के पदाधिकारी और बाकी वरिष्ठ नेता लोग उनका स्वागत कई। श्री भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र के शिक्षा वर्ग में शामिल हुई है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज पटना में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के आयोजन कल गई, जेकर उद्देश्य लोग के फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण बचाव के खातिर जागरूक करे के रहे। ए अवसर पर बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार बतावले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन संदेश में कहले बाड़े कि पूरा देश के फिट रहल जरूरी बा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद खातिर आज चुनाव भइल, जेमे पार्टी के आलोक सिंह के प्रदेश अध्यक्ष चुनल गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेन्द्र कुशवाहा एकर घोषणा कैले। उन्हें प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनावल गई बा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के बिहार में 16 जून के बाद आवे के संभावना बा। मौसम विभाग से मिले जानकारी के अनुसार मॉनसून सामान्य गति से बंगाल की खाड़ी के ज्यादातर हिस्सा में आगे बढ़ रहा बा। विभाग बतावलस कि अगला 2 से 3 दिन के भीतर देश के पूर्वोत्तर हिस्सा में मॉनसून सक्रिय हो जाए। राज्य में चक्रवाती परिसंचरण के असर से मौसम के मिजाज बदलल बा।

0: मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटा के भीतर बांका, कटिहार और भागलपुर जिला में हल्का बारिश हो सकेला। ए दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चले के भी संभावना बा। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के एजे समाप्त भइल।
1: आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुनने वाला सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम। श्रोता भाई बहन, देखें पहले भी कहल जात रहे कि थाली में जूठा छोड़ल ठीक ना होके, तो बचपन में हमनी के ही ना जानत रहे कि काहे ना छोड़े के चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जानकारी भइल, दुनिया भर में खाद्यान्न के संरक्षण खातिर बहुत जोर शोर से जागरूकता अभियान चलावल जा रहा बा, और ओकर उद्देश्य यह बा कि सबका के बढ़िया भोजन, जौन की बीमारी ना फैलावे वाला भोजन होके, वो विश्व भर के सब व्यक्ति के उपलब्ध करावल जा, और ये प्रत्येक वर्ष 7 जून के मनावल जाला। जब पहले गांव में कोठिला रहत रहे, बखार रहत रहे, तो वो घड़ी साल साल के चावल रखल रहत रहे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पुराना तक। वो घड़ी कोई ना जानत रहे कि खाद्य सुरक्षा खातिर विशेष दिवस भी मनावल जाए। लेकिन हमनी के घर के जौन लोग रहे, जौन भी हम पूर्वज लोग रहन, वो ये खातिर खाद्यान्न के सुरक्षा करत रहन, सुरक्षित रखत रहन कि हम आपदा के समय में, बाढ़ के समय में, अकाल के समय में हमारी अनाज काम करे। और वैद्य लोग भी बतावत रहन कि पुराना अन्न के ही पथ्य दिहल जला, माने पुराना अन्न सुपाच्य होखेला, तब उतना पेस्टिसाइड ना रहे, तब उतना केमिकल ना रहे। और खाद्यान्न के बचावे खातिर हमनी की हैं काफ़ी, माने जैविक और कीड़ानाशक के मारे खातिर नीम ऐसा कुल रहत रहे जो ना हमें कीड़ी उड़ी ना लगत रही सन। नीम के पत्ती छाल के माध्यम से ओकरा के प्रिजर्व भी कल जात रहे कि वो अनाज कबो खराबे मत होके, आकर कोई प्रभाव मत पड़े, ओकर कोई माने दूषित प्रभाव शरीर पर मत पड़े, एकर भी व्यवस्था सुनिश्चित कल जात रहे। श्रोता भाई बहन, खाद्यान्नों का संरक्षण आज की जरूरत विषय पर आज हमने के चर्चा कर ली। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। आज के कार्यक्रम में हमने के ललन सिंह के गावल लोकगीत भी सुनल जाए। ग्रामीण विकास में बैंकन की भूमिका, यह विषय पर आज हमने के ददन पांडे जी से वार्ता सुनल जाए। कहे से कि गाँव के विकास में और ग्रामीणन के विकास में, किसान लोग के विकास में, महिला के विकास में बैंकन के जौन भूमिका बा वो अतुलनीय बा। आज अगर बैंक ना रहे तो इतना जल्दी से प्रगति गांव में ना दिखेत। कार्यक्रम में हमनी के चलत चलत मौसम के पूर्वानुमान पर भी चर्चा कर जाई। श्रोता भाई बहन, चर्चा कर जाओ खाद्यान्न के संरक्षण आज की जरूरत पर। देखें आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। ये दिवस मनावे के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि खाद्य के सुरक्षा करके सब तक, सब व्यक्ति तक हमनी के अनाज के उपलब्धता सुनिश्चित कर जा। एकरा अलावा हमनी के वैसन अनाज के व्यवस्था कर जा जौना में कि कोई

तरह के जौन बीमारी बा उ फैले वाला चीज मत होखे, माने कि दूषित अनाज ना होखे, दूषित खाद्यान्न मत होखे। तो पौष्टिक अन्न भोजन के उपलब्धता सुनिश्चित करे खातिर ही या दुनिया भर में वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिवस मनावल जा रहल बा। श्रोता भाई बहन, बढ़त जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, जौन वैश्विक अस्थिरता चलता, जहाँ तहाँ युद्ध की स्थिति बा, ये खाद्य दिवस के महत्व के काफ़ी बढ़ा देला। ये दिवस के अंतिम लक्ष्य ई बा कि कोई भी व्यक्ति भूखा मत रहे। श्रोता भाई बहन, हमनी के अपना देश भारत में भी नागरिक लोगन के खाद्य सुरक्षा खातिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनावल गई बा। सरकार द्वारा एकरा अलावा कई कल्याणकारी योजना चला के जरूरतमंद परिवार के, जरूरतमंद लोगन के निःशुल्क अनाज भी उपलब्ध करावल जा रहल बा, या कुछ लोगन के बहुत ही कम मूल्य पर अनाज के व्यवस्था सुनिश्चित करावल जा रहल बा, ओकर गारंटी दिहल जा रहल बा, खाद्यान्न के गारंटी भी दिहल जा रहल बा, ताकि अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जे भी जरूरतमंद बा ओकरा खाए खातिर पर्याप्त अनाज मिले और ओकरा भोजन के बिना रात मत काटे के पड़े। श्रोता भाई बहन, दुनिया भर में 7 जून के विश्व खाद्य दिवस मनावल जाला। एकरा मनावे के सबसे बड़ कारण में से एक ये भी है कि दूषित भोजन से होखे वाला स्वास्थ्य के खतरा के कम कई। अगर खाद्य सुरक्षा के प्राथमिकता दिखल जाए तो हमने के दूषित भोजन के खतरा के भी कम करे के बा। मान लें कि भोजन के उपलब्धता बा, लेकिन एक दिन के बनावल खाना अगर 4 दिन खा तो नहीं जा, तो हमने के शरीर में पौष्टिकता ना बढ़ाई बल्कि बीमारी के उघर करी। तो ऐसे दूषित भोजन से बचाना भी आज के दिवस के उद्देश्य है। खाद्य और कृषि संगठन ये साल के जो थीम बनौले बा ओकरा में बा कि बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह थीम पर आज दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा दिवस मनावल जा रहल बा और एकरा चलते जो खाद्य जनित बीमारी से होखे वाला नुकसान पर प्रकाश डालल जा रहल बा। समाधान खातिर ठोस कदम के उठावे खातिर जोर भी दिहल जा रहल बा, बतावल जा रहल बा कि कैसे हमनी के समाधान एकरा के कैसे पावल जाओ। श्रोता भाई बहन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दूषित भोजन से हर साल लाखों लोग बीमार पड़त और कई लोगों के मौत भी हो रहल बा। खेत से लेकर थाली तक जो भोजन के पूरा श्रृंखला बा ओकरा में हमनी के स्वच्छता, सही भंडारण, सुरक्षा मानक के पालन कइल जाओ। जब खेत से में जब धान गेहूँ कटाता ओकरा खलिहान तक लावे तक, फिर खलिहान से घर तक लावे में और ओकरा बाद खड़ा अनाज से खाद्यान्न बनावे तक हमनी के सही भंडारण करे के बा, ओकरा में स्वच्छता के पालन करे के बा और ये देखे के बा कि ओकर पौष्टिकता खत्म मत होखे, ओकर सुरक्षा मानक के पालन कइल भी एकर उद्देश्य बा। यह साल विश्व स्तर पर एकरा में सेमिनार भी कइल जा रहल बा, जागरूकता अभियान चलावल जा रहल बा, खाद्य परीक्षण कार्यक्रम के आयोजन भी कइल गइल बा और कई तरह के कार्यक्रम चला के हमनी के विश्व स्वास्थ्य संगठन जौन बा तो खाद्य सुरक्षा दिवस मनावे खातिर लोगन के जागरूक भी कर रहल बा। श्रोता भाई बहन, देखें पहले कहल जाता है कि जैसन आदमी अन्न खाई, माने जितना अच्छा अन्न खाई ओकरा के ओकर जौन शरीर बा उतने अच्छा रही, ओकर मन उतना अच्छा रही। और हर व्यक्ति के खाद्य उपलब्ध करावे खातिर भी सरकार सुनिश्चित कैले बा कि गरीब खाद्यान्न गारंटी योजना और तरह के अन्नपूर्णा योजना, कई तरह की योजना चला के घर घर तक अनाज पहुँचावे के, जरूरतमंद तक के अनाज पहुँचावे खातिर भी काम कैल जा रहल बा। तो श्रोता भाई बहन, अभी चर्चा के बाद हमने के सुनल जाओ लोकगीत। आज के कलाकार बनी ललन सिंह जी, आई सुनल जाओ लोकगीत।

बड़ा बढ़िया गीत सुनौनी है ललन सिंह जी, यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद दिहल जा। श्रोता भाई बहन, देखें खासकर किसानन के विकास में और गांवन के विकास में बैंकन के भूमिका अतुलनीय बा। ये बैंक ऐसा सहारा बनल कि लोग के महंगा कर्जा ऋण से साहूकारन के चंगुल से हर तरह से छुट्टी बैंक दिवौलस। और आज स्थिति ये बा कि कोई भी या घर बनावे के होखे तब, गाड़ी घोड़ा निकाले के होखे तब, या दुकान दौरी करे के बाद तब, व्यवसाय करे के बाद तब, हर चीज़ में बैंक खड़ा बा। बैंक ऋण देवे खातिर खड़ा बा और ऋण लेके गांवन के जौन तस्वीर बदल रहल बा, चाहे वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो रहल हो, जीविका के माध्यम से बदल रहल होखे, चाहे उद्यमी योजना के माध्यम से बदल रहल बा, बहुत तेज़ी से गांवन में विकास दिखे लागल बा। गांवन में बैंकन के का भूमिका बा, ओकरा विकास में कैसे कैसे भूमिका बा, ओकरा के और का करे के चाहिए, यह पर आज हमनी के वार्ता सुनल जी। वार्ताकार होकब ददन

0: पांडे, लेकिन आई एकरा से पहले एगो संदेश सुन लिहल जा।
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता और सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान।
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।
3: आकाशवाणी सासाराम से संध्या 7 बजे रविवार के दिन जरूर सुने कार्यक्रम ममता का आंचल। साथ में होंगी आईवीए विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा चखैयार।
0: भाई बहन आई अब सुनल जाओ हमने के वार्ता ग्रामीण विकास में बैंकन की भूमिका। वार्ताकार बनी ददन पांडे, आई सुनल जाओ ये वार्ता।
4: भारत गांव का देश है और देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि के विकास पर ही देश की उन्नति निर्भर करती है। ऐसे में कृषि के विकास के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं और इसमें बैंकों से वित्तीय सहायता प्रदान कर गाँव के विकास को गति देने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ की अधिकाधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है। उदारीकरण और नई आर्थिक नीति के कारण कृषि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक योजनाओं को शामिल किया गया है। एक आंकड़े के अनुसार 74.3% जनसंख्या गाँव में ही निवास करती है और 67% भाग की जनसंख्या कृषि क्षेत्र से ही आजीविका प्राप्त करती है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि प्रधान है। वस्तुतः कृषि राष्ट्र की खाद्य पूर्ति करने का एकमात्र बड़ा साधन है। उद्योगों को भी कच्चा माल देने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। सच पूछा जाए तो कृषि हमारे देश में जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा साधन है। कृषि के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना भी असंभव है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक के सभी राष्ट्रनायक इस बात पर एकमत हैं कि कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि कृषि असफल रहती है तो इसमें सरकार और राष्ट्र दोनों की असफलता चिन्हित होती है। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र का न तो पर्याप्त विकास हुआ और न ही इस क्षेत्र को ज़्यादा महत्व मिल सका। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक अनेक योजनाओं को कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई, किंतु किसानों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा नहीं सुधरी। यह कृषि क्षेत्र की बदहाली का ही प्रमाण है कि किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। इसमें आज भी व्यापक सुधार की ज़रूरत है। हालांकि बैंकों के माध्यम से सरकार ने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और इसका लाभ कृषि क्षेत्र को मिल रहा है, किंतु अब तक की सहायता पर्याप्त नहीं है। कृषि पर उद्योग की भांति बैंकों का ध्यान जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के 3 पहलुओं में खाद्य सुरक्षा का स्थान प्रथम आता है। इसके बाद ही रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की बातें आती हैं। खाद्यान्नों की कीमत और खाद्य के सहायक तत्वों संबंधी सरकारी नीतियों पर ही हमारी अर्थव्यवस्था का विकास दर निश्चित होता है। कृषि कार्य में जैसे जैसे वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास हुआ, वैसे वैसे इस कार्य को भी पूंजी की आवश्यकता पड़ती गई। किसानों की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण वह समय पर फसल में पानी, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने में असमर्थ रहा। इसका कृषि उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा। इससे निपटने के लिए किसान को आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ी। पहले यह ज़रूरत किसान सेठ महाजनों से कर्ज लेकर पूरा करता था, लेकिन सूद का दर उतना अधिक होता था कि किसान कर्ज में जन्म लेता था और कर्ज में ही मर जाता था। कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग होने लगा जो खर्चीला है। ऐसी स्थिति में कम ब्याज दर पर बड़ी पूंजी की ज़रूरत कृषि क्षेत्र में हुई और सरकार ने बैंकों के माध्यम से वित्तीय मदद करने का प्रावधान किया, जिससे आज कृषि क्षेत्र में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है और देश आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है।

0: छोटे से छोटे किसानों को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाने के लिए सरकार ने बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे एक निश्चित मात्रा में किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करावें। हालांकि यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गाँव के विकास में बैंकों की भूमिका निर्विवाद है। सरकारी नीति के ही तहत शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग के लिए बैंक द्वारा कर्ज दिए जाते हैं, जिससे वे अपना रोजगार चला सकें और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। इस योजना का लाभ अनेक युवक उठा रहे हैं और गांव कस्बे में ही अपने छोटे उद्योग के द्वारा विकास में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। इसी तरह से बैंक बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के अलावे छात्रों को ऋण प्रदान कर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा व्यावसायिक हो जाने के कारण महंगी हो गई है। ऐसे में शिक्षा ऋण के बिना बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं होता। इस तरह आज हर क्षेत्र में बैंकों की सेवाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। आज सरकार का ध्यान ग्रामीण विकास पर सबसे अधिक है, इसलिए बैंकों को ग्रामीण विकास की तरफ ध्यान देना आवश्यक हो गया है। देश का परंपरागत ग्रामीण समाज तथा औसत स्तरीय गरीब वर्ग इस प्रभाव से अछूता नहीं रह पाता। उदारीकरण की नीतियां बहुसंख्यक विदेशी कंपनियों के प्रभाव से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से आधुनिक क्षेत्र में प्रविष्ट हो रही हैं। किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास बिना वित्तीय मदद के नहीं हो सकता। आज गाँव की तस्वीर बदल रही है, वहाँ पूंजी निवेश हो रहा है, शिक्षा के साधन बढ़ाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है। इसका सीधा लाभ कृषि क्षेत्र को मिल रहा है। कृषि का विकास होने का मतलब है गांव का विकास और ग्रामीणों की खुशहाली। केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित रोजगार गारंटी कार्यक्रमों का लाभ गाँव में दिख रहा है। मजदूरों का पलायन रुका है, रोजगार में वृद्धि हुई है, किसानों की खुशहाली बढ़ी है। इसके पीछे बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिस क्षेत्र का विकास होता है उस क्षेत्र में बैंकों की दिलचस्पी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे बैंकों को लाभ कमाने का मौका मिलता है। इस तरह बैंक आज विकास के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि इसके अभी और बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, इसलिए बैंकों को आम आदमी की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन और बढ़ चढ़कर करना चाहिए, जिससे मजबूत गाँव का निर्माण किया जा सके और भारत निर्माण की प्रक्रिया को और तेज किया जा सके। ग्रामीण भारत के विकास के बिना मजबूत भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता और इसके लिए हर हाथ को काम और हर खेत को पानी की ज़रूरत है, तभी एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारत के व्यावसायिक बैंकों की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है। देश के नीति निर्माताओं का ध्यान इस दिशा में गया है, जिसका लाभ प्रायः हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और इससे गांव भी अछूता नहीं है। लेकिन जब तक गांव-गांव सबल नहीं होंगे, मजबूत भारत का निर्माण नहीं हो सकेगा। जब तक बेरोजगारी, अशिक्षा और अंधविश्वास से मुक्ति नहीं मिलेगी, भारत विकास का सपना पूरा नहीं कर सकता। इस सपने को पूरा करने में प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित है और आज के आर्थिक युग में विकास के पीछे अर्थ का सबसे अधिक महत्व है और ऐसे में बैंकों की भूमिका निर्विवाद है। लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती ज़रूरतों के बीच बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों की ओर को और अधिक संवेदनशील होकर काम करने की ज़रूरत है।
1: बहुत बढ़िया जानकारी देनी है ददन पांडे जी। यहाँ के बतौनी है कि ग्रामीण विकास में बैंक के का भूमिका बा और पढ़ाई लिखाई से लेकर स्वरोजगार तक में और खेती गृहस्थी से लेकर कारोबार तक में सब में बैंक हर कदम पर खड़ा बा और हमने के चाहिए कि अगर अधिक से अधिक उपयोग कर जा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खेती के तस्वीर बदल गई बा, बैंकन में जौन भीड़ हो रहा बा, बैंक जमुना तरह से खड़ा बा किसान भाई लोग के साथ, ओकर भी बहुत सराहनीय बा कि कैसे हमनी के गांव के विकास में बैंक पूरक बनल बा। और यहाँ तक कि देखें बहुत सा लोग जो कारोबार कर रहा बा गाँव में

आधारभूत संरचना के जो निर्माण हो रहल बा, मिल खुल रहल बा, सड़क बन रहल बा, ओकरा में भी जितना मशीनरी के खरीदारी हो रहल बा, वो खरीदारी में भी बैंक के कदम पर कदम साथ दे रहल बा। और इतने ना नाबार्ड जोन बा तौन भी गांव के विकास में बैंकन के बहुत बड़ा सहयोगी बनल बा। श्रोता भाई बहन जरा सोची कि हमनी के जैसे धान गेहूं के जोन खरीद करत हैं या जोन बिक्री करत हैं या पैक्सन के माध्यम से, ओकरा में भी बैंक बा। अगर वो पैक्स के जोन सहकारी बैंक बा, अगर वो क्रेडिट ना दी तो हमनी के हैं पैक्स के पास उतना पैसा नहीं है कि वो खरीदारी करे। तो हर कदम पर कदम बैंक साथ दे रहल बा और ओकरा के हमनी के चाही कि आगे भी बैंक के सहयोग लेके गांवन के विकास में हमनी के भूमिका निभावल जाओ। श्रोता भाई बहन देखें, जब तक से गांव के विकास ना हुई ना, तब तक देश के विकास ना हो सके। कहल गई बा महात्मा गांधी के कहना रहे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहना रहे कि जब तक गांव के विकास ना हुई ना, भारत गांवन के देश है और गांव के विकास से ही देश के तरक्की संभव बा। आज भी अधिकांश लोग, तीन भाग लोग, तीन तिहाई लोग गांवन में निवास करेलन। सरकार भी गांवन में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करावे खातिर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावा देवे खातिर बहुत सा काम कर रहल बा। गांवन में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के खोल बा, जो ना से कि लोग स्वस्थ रहे, पैक्सन के माध्यम से रखे खातिर, अनाजन के सुरक्षित रखे खातिर गोदाम के निर्माण हो रहल बा। कृषि यंत्र बैंकन के निर्माण कैल गई बा और गांव गांव तक पहुंच पथ बनावे खातिर पक्का सड़क, पक्का नाली गली, पक्का स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हर तरह से गांवन के विकास करावे खातिर भी सरकार प्रतिबद्ध बा। योजना के माध्यम से आज गांव शहर के टक्कर दे रहल बा, कई गांवन के शहर के समकक्ष मानल जा रहल बा। तक एहमे भी अगर देखल जाए कि जितना बढ़िया गांवन के विकास हो रहल बा, उमें बैंक जोन बा ओकर भूमिका के हमनी के नकारल ना जा सके, ओकर भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बा। श्रोता भाई बहन, अब हमनी के मौसम के मिजाज पर भी थोड़ा चर्चा कर जाओ। भारत के मौसम विज्ञान विभाग जोन बा ओकरा द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार जिला के अधिकांश भाग में मौसम शुष्क रहे के संभावना बा। अधिकतम तापमान जोन बा 39 डिग्री के आसपास रही और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे का अनुमान बा। प्रातः काल में और सायन काल में सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 65-20% के आसपास रहे के संभावना बा और 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से पछुआ हवा चले के भी संभावना जतावल जा रहा बा। जोन चेतावनी बा कि एक दो स्थान पर गरज चमक, वज्रपात और तेज झोंका से हवा के साथ हल्का वर्षा भी होके के संभावना जतावल जा रहल बा। और ये भी कहल सलाह दिहल जा रहल बा कि आंधी, बिजली और तेज हवा से हमनी के खेती के कार्य में ऐसे बाहर ना निकलल जा जौना से कि कोई घटना दुर्घटना होके के संभावना होके। तो हमनी के बहुत बच के इमें काम करे के बा। और आज जोन अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता रहल 60% रहल, न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 15% रहल। अधिकतम तापमान आज 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कैल गई है, न्यूनतम तापमान आज 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कैल गई है। हवा के गति आज 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहल है और पवन जोन दिशा बा 130 डिग्री पर रहल है। श्रोता भाई बहन, अब तक कार्यक्रम के समय भी समाप्त हो रहल बा, तो कार्यक्रम संपन्न करे के अनुमति दी। सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई के ओर से प्रणाम।

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर, FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, दुल्हा गंगा पार के। इस फिल्म से आवाज़ें हैं सुरेश वाडेकर और अलका याग्निक की, गीत और संगीत लक्ष्मण शाहबादी का है।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जसपाल सिंह की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है तथा फिल्म है नदिया के पार।

0: आकाशवाणी सासाराम से संध्या 7 बजे रविवार के दिन जरूर सुने कार्यक्रम ममता का आंचल। साथ में होंगी आईवीए विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा चखैयार।
1: सांझ गीत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश बाडकर की आवाज़ में एक गीत। गीतकार हैं अनजान और संगीत है चित्रगुप्त का और फिल्म है हमार भौजी।

सांझ गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में एक गीत। गीतकार हैं विनय बिहारी, संगीत है सुजीत कुमार का और फिल्म है बलमा बड़ा नादान।

0: सांझ गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में एक गीत। गीतकार हैं विनय बिहारी, संगीत है सुजीत कुमार का और फिल्म है बलमा बड़ा नादान।
1: अरे

0: एक नए रंग, एक नए कलेवर में हम लेकर आने लगे हैं आपके लिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी परी से। आज से, जैसा कि हमने अभी बताया आपको, एक नया सफर, एक नया प्रोग्राम, लेकिन नाम पुराना, ममता का आंचल हम शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर श्रद्धा चखियार को बुलाने से पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि बिहार में हर दिन हजारों कपल एक ऐसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिसके बारे में घर में बात नहीं होती, डॉक्टर से पूछने में शर्म आती है और समाज में बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। वो तकलीफ है निसंतानता। और आज से हर रविवार इस तकलीफ पर ममता का आंचल कार्यक्रम में हम खुलकर बेझिझक बात करेंगे और आप भी फोन के माध्यम से हमसे सवाल पूछिएगा। हमारे साथ होती हैं डॉक्टर डॉक्टर श्रद्धा चखियार, जो इलाज ही नहीं करती, समझती भी हैं आपको। हाँ, सारी बातें। ये कार्यक्रम वैसे लोगों के लिए जो दूर दराज गांव में बैठे हैं, पूरे बिहार में, जहां जानकारियां पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम रेडियो का सहारा लेकर के आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, जो बातें हमने कही ऊपर कि अगर बच्चा नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, बेझिझक बात कीजिए, सिर्फ ये एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर श्रद्धा चखियार को बुलाएं, उससे पहले हम अपना फोन नंबर, यानी डॉक्टर श्रद्धा का फोन नंबर देना चाहते हैं कि आप सीधे सीधे बात कर लीजिए उनसे। 9162562266 ये नंबर है, इस पर आप चाहिए तो सीधे सीधे बात कर लीजिएगा उनसे। सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बस आपको खुलकर सामने आना है। डॉक्टर श्रद्धा, हम बातें कर रहे हैं लोगों से, आपने सुना, और अब हम आमंत्रित करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपको।
1: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी। आज हम लोग नए टाइम पे बात कर रहे हैं,
0: नए दिन पर भी,
1: नए दिन पे बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि निसंतानता सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है
0: जी,
1: और इसका इलाज संभव है
0: जी।
1: और हमने रेडियो प्रोग्राम इसलिए चुना है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इस प्रोग्राम से हम उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जो निसंतानता से जूझ तो रहे हैं,
0: हाँ,
1: लेकिन उन्हें कोई उम्मीद की किरण नहीं मिल पा रही है
0: जी।
1: तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक बीमारी है, विज्ञान बहुत आगे जा चुका है और इसका इलाज संभव है
0: जी।
1: और अगर आप सही डॉक्टर से सही समय पे मिलते हैं तो आप इलाज से आपको अवश्य आपको बच्चा होता है
0: जी।
1: और विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, आजकल IVF जैसा जो मॉडर्न लेटेस्ट टेक्निक आ गया है, IVF ICSI, वो अगर लोग अपनाते हैं तो कितने लोग को बच्चा ठहर पा रहा है।
0: विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, झिझकने की जरूरत नहीं। जैसा कि हमने कहा ना कि खुलकर बात करनी है, रविवार के इस ममता का आंचल कार्यक्रम में हम डॉक्टर श्रद्धा से सारे सवालों का जवाब दिलवाएंगे। एक छोटी सी बीमारी है, आराम से ठीक हो जाएगी किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से अगर आप मिलते हैं। और ऐसे में हम डॉक्टर श्रद्धा का नंबर आपको बता रहे हैं कि 9162562266 9162562266। बिहार का कोई भी व्यक्ति ना छूटे, हमारी ये कोशिश है। और हम बड़े बुजुर्गों से भी कहना चाहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएं, अपने बच्चों को प्रेरित करें, न कि ताने दें। हाँ, मुझे ये भी पता है हमारे गांव घर में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे अपने घर में भी क्या होता है, अरे उसे बच्चा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्चा नहीं है ठीक है, लेकिन बच्चा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है, बीमारी है, विशेषज्ञ डॉक्टर से मुलाकात होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, हमने रविवार को ये कार्यक्रम शुरू किया है और एकदम नए तेवर में कि जो दिल में आए आपसे पूछे।
1: बिल्कुल,
0: हाँ,
1: ये सब लोग उत्सुक होंगे कि इस प्रोग्राम में क्या है और क्या जानना चाहते हैं। इसमें डेफिनेटली हम लोग निसंतानता के बारे में तो बताते ही हैं,
0: हाँ,
1: लेकिन साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पूरा चीज बताते हैं, यानी कि वैसी महिलाएं जिनको मासिक में दर्द दिक्कत है, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कौन कौन सुन सकता है इस प्रोग्राम को
0: जी।
1: वैसी महिलाएं जिनको मासिक में दिक्कत है, जिनको मासिक नियमित रूप से नहीं हो रहा है
0: जी,
1: जिनको अत्यधिक दर्द होता है और कहीं ना कहीं मासिक के समय, और कहीं ना कहीं ये सब कारण

श्रोताओं, आप सुन रहे थे भोजपुरी फिल्म गीत। कार्यक्रम था सांझ गीत। इसी गीत के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत संपन्न होता है। FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
1: नमस्कार, मैं हूं राजेश और आज रविवार के दिन ममता का आंचल कार्यक्रम

0: होते हैं निसंतानता के। उसी तरह पुरुष जो अत्यधिक बीड़ी तंबाकू गुटखा ये लेते हैं
1: जी,
0: तो वह कहीं ना कहीं वो भी निसंतानता का कारण होता है। तो हम उन सभी को प्रेरित करते हैं कि आप सही लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि आपका ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रहे।
1: जी जी।
0: और ये जानना जरूरी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब तक आप सही पूरी तरह से जानकार नहीं होंगे, सशक्त नहीं हो पाइएगा अपने जानकारी में, आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाइएगा। और मैं ये सोचती हूँ कि हर महिला का रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसका चॉइस होना चाहिए, और वो तभी चॉइस ले सकती है जब वो प्रॉपर तरीके से वो जानकार हो।
1: जी।
0: आजकल हर बहुत सी महिलाएं एमबीसीएस भी हो गई हैं, वो अपना प्रेगनेंसी कुछ दिन बाद प्लान करना चाहती, अच्छी बात है, एमबीसीएस होना चाहिए, प्रेगनेंसी भी आप बाद में प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका सारा चीज ठीक है, इसलिए एक बार अपना जांच जरूर करा ले
1: जी।
0: और जब जांच में सब कुछ ठीक हो तो आप अपना रिप्रोडक्शन अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कर सकते हैं। और हम यहाँ एक चीज बताना चाहते हैं, यानी राजेश एक चीज कहना चाहता है कि बच्चा नहीं है, डॉक्टर के पास जाएं, आईवीएफ पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत आसान हो गया। और ये सारा कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी की तरफ से। श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी पटना में है, भिखना पहाड़ी में है, आप यहाँ आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और आने से पहले 9162562266 ये नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, आपने निसंतानता की बात की आज के इस एपिसोड में, पहली बार बताइए लोगों को कि निसंतानता क्या है।
0: निसंतानता आजकल बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, ये वैसे दंपति को बोला जाता है जो पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, ऐसे दंपति को निसंतान दंपति कहा जाता है। इसमें ये जानना जरूरी है कि अगर आपने एक साल कोशिश कर लिया और बच्चा नहीं ठहरा तो अब आपको जाकर इलाज कराना होगा। आप इलाज कराएं, कहाँ दिक्कत है, हो सकता है औरत में दिक्कत हो सकता है पुरुष में दिक्कत हो, जो सामान्य डॉक्टर भी पकड़ लेते हैं। अगर औरत में अंडाशय का प्रॉब्लम है, अंडा नहीं बन रहा है, वजन ज्यादा है, या पुरुष में कोई दिक्कत है तो आप अपना इलाज कराएं। लेकिन ध्यान रखें, अगर 2 साल हो गया और अब तक बच्चा नहीं ठहरा तो अब जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिले।
1: हाँ।
0: क्योंकि वो आपका इलाज बेहतर करेंगे, और बेहतर करेंगे सही समय पे करेंगे। क्योंकि आपका जो कीमती समय है, जिस समय बच्चा सबसे ज्यादा ठहर सकता है
1: जी,
0: उस समय इलाज करेंगे ताकि आपको आसान तरीके से, यानी कि दवाई से, कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर जैसे IUI ये सब से आपको बच्चा ठहर जाएगा। आप जितना लेट करेंगे आपकी बीमारी उतनी जटिल होते जाएगी और आपको बड़े बड़े प्रोसीजर्स कराने पड़ेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा है। और एक बात बता दें डॉक्टर श्रद्धा की, अगर जिनको पैसे की समस्या है तो श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी में क्या सुविधाएं उनको मिल रही है।
0: बिल्कुल।
1: जो रेडियो कार्यक्रम को सुनकर आएंगे यहाँ पर या बातें करेंगे तो उनके लिए पहला कंसल्टेशन फी मुफ्त होगा, अल्ट्रासाउंड भी मुफ्त है, पहला अल्ट्रासाउंड मुफ्त होगा। अगर आप एडमिट होते हैं तो रहने के लिए, अटेंडेंट के लिए आपको जगह दी जाएगी, हर तरीके से सहयोग किया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो है ना कि एक बार पैसा नहीं देना है, टुकड़ों में EMI पर आप पैसा देके अपना इलाज करा सकते हैं। और ये टुकड़ा एक दो टुकड़ा नहीं, 24 टुकड़ों में, ये मतलब 24 पार्ट में, 24 भाग में आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं। और इसके पीछे रीजन ये है कि अब डॉक्टर श्रद्धा ने ये मुहिम चलाया है कि बिहार में कोई भी कपल जो है ना निसंतान ना रहे, इलाज कराए, पैसे की वजह से किसी का इलाज ना हो, ये वो नहीं चाहती है। डॉक्टर श्रद्धा सही कह रहे हैं ना, क्या चाहती हैं बिहार से आप?
0: बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि हर लोग जागरूक हो और उनको पता चले कि निसंतानता कोई अभिशाप नहीं है, ये सिर्फ एक बीमारी है
1: जी।
0: सही समय पर सही जगह जाकर आप इलाज करा ले।
1: हाँ।
0: ताकि, क्योंकि निसंतानता से मेंटल टेंशन भी बहुत होता है, उनका पर्सनल लाइफ बहुत खराब होता है, उस दंपति को समाज में इधर उधर से ताने बहुत पड़ते हैं।
1: हाँ।
0: तो अगर आप सही समय पे इलाज कर लेते हैं और आपको अगर बच्चा हो जाता है तो हर तरह से ठीक है,
1: हर तरीके से ठीक है। और इसमें जब श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी एक राष्ट्रीय स्तर का IVF सेंटर है, आगे से बढ़कर हाथ बढ़ा रहा है तो आपको हाथ पकड़ लेना चाहिए, किसी

0: भी चीज में संकोच करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
1: मैं ये बताना चाहती हूँ निसंतानता का कारण क्या क्या है।
0: हाँ बताइए।
1: निसंतानता का कारण औरत भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। निसंतानता कभी कभी इस कारण से भी होता है कि औरत में अंडाशय में अंडे खत्म हो गए हैं।
0: हाँ।
1: या फिर अंडे ही नहीं बन रहे हो
0: जी।
1: क्योंकि जब तक अंडा नहीं बनेगा तब तक वो पुरुष के शुक्राणु से नहीं मिल सकता है और बच्चा नहीं ठहर सकता है। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये भी हो सकता है कि अंडे ही नहीं बन रहे हो, कारण कुछ भी हो सकता है, या फिर पुरुष के शुक्राणु में कोई दिक्कत
0: जी।
1: या फिर अनएक्सप्लेन्ड, जिसको कि जेनेटिक लेवल पे हो सकता है, जो अनएक्सप्लेन्ड हो सकता
0: जी,
1: है
0: जी, जी, जी।
1: तो ये सारे कारण निसंतानता के हैं। और जो भी निसंतान दंपति है और जो सही जगह इलाज करते हैं करवाते हैं, तो 60-70% लोग को बच्चा ठहर जाता है।
0: बच्चा ठहर जाता है, लेकिन उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना होगा। हाँ, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना होगा, जिससे पता चल सके कि महिला में, पुरुष में या कोई ऐसी अदृश्य चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। और IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत ही आसान हो चुका है, और आप उसके लिए प्रयास कीजिए। बहुत बड़ी चीज मत मानिए, विज्ञान इतना आगे, मेडिकल साइंस इतना आगे है, ये छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर श्रद्धा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ आप कहना चाहती हैं।
1: जी हाँ, श्रद्धा IVF ये चाहता है कि हम हर कपल को सही जानकारी दे, ताकि सही समय पर वो डिसीजन ले पाए
0: जी,
1: अपना संतान सुख का डिसीजन ले पाए
0: जी,
1: ताकि उनका सपना सही समय पे पूरा हो जाए,
0: सही
1: और
0: समय
1: उनको
0: पर,
1: जूझना हाँ, ना पड़े।
0: बिल्कुल जूझना ना पड़े, और सारा प्रयोजन कि आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएं। बच्चे बहुत अहम रोल अदा करते हैं आपके जीवन में। बड़े बुजुर्गों बार बार कह रहे हैं कि इसमें आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, पहचानिए, आगे बढ़िए। हमारे समाज में आज भी बड़े बुजुर्गों की बातें सुनी जाती हैं, ध्यान से सुनी जाती हैं। और जब डॉक्टर श्रद्धा नियमित रूप से अपने कीमती वक्त में से निकाल के रेडियो में आती हैं, बोलती हैं, आपकी काउंसलिंग करती हैं, तो आप घर पर बैठ के तो कर ही सकते हैं ना। पूरे बिहार में हम इसे लेकर आ रहे हैं कि पूरा बिहार जो है निसंतानता से मुक्त हो जाए। कुछ अपने क्लिनिक के बारे में बताना चाहिएगा श्रद्धा, IVF के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। आज इंट्रोडक्टरी एपिसोड है हमारा, संडे है।
1: मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में हम मरीज की का जो इलाज है वो तो करते ही है, लेकिन साथ में हम संवेदना के साथ इलाज करते हैं। हम समझते हैं हर उस मरीज का दर्द जो निसंतानता से जूझ रहा है, और ये दर्द समझते हैं, हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी ट्रीटमेंट करें, बेहतरीन का बेहतरीन इलाज हो पाए, और उनका निसंतानता का जिस चीज से जूझ रहे वो खत्म हो पाए और उनका सपना पूरा हो।
0: सपना पूरा हो, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। कहते हैं ना कि विश्वास अगर हो गया ना तो आधी समस्या तो वहीं दूर हो जा रही है। और हम एकदम खुले मन से इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार के घर में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी आपके साथ खड़ा है। बच्चा नहीं हो पाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एक रोग है जिसका इलाज किया जा सकता है। और इसी क्रम में हम अपने आगे से डॉक्टर श्रद्धा का नंबर दे रहे हैं, खुलकर बात कीजिए, पुरुष बात कीजिए, महिला बात कीजिए, बड़े बुजुर्ग बात करें, जो चाहे बात करें, और सकारात्मक रिजल्ट के लिए बात करें। नंबर नोट कीजिए 9162562266, 9162562266, हिंदी में 9162562266 ये नंबर है। इस पर बेबाक बात करें, एकदम खुलकर बिना किसी शर्म के, संकोच नहीं करना है, अब बात करना है, समाधान निकलेगा। फिलहाल ममता का आंचल रविवार का ये एपिसोड देखते देखते समय खत्म होने को है। चलने से पहले डॉक्टर श्रद्धा को भी हम साथ लिए चलते हैं और दोनों कहते हैं नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है स्थानीय गतिविधियों पर आधारित सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

श्रोताओं, संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम में आज हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। कल दिनांक 6 जून को जिला पदाधिकारी रोहतास के द्वारा जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दैनिक साक्षात्कार किया गया। उस दैनिक साक्षात्कार के क्रम में 5 व्यक्तियों के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें आवेदक सूर्यनाथ शाह ग्राम नावाडी पोस्ट मेयारी थाना नोखा के द्वारा मकान निर्माण में बाधा उत्पन्न करने एवं अवरोध करने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया, जिसे जांच कर उचित कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम को निर्देशित किया गया। इसके अलावा आवेदक पंकज कुमार ग्राम धौडाड़ के द्वारा भी खाद्य मिलावट रोकथाम एवं जन जागरूकता अभियान हेतु सहयोग प्रदान करने के संबंध में आवेदन दिया गया, इसे जांच कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी रोहतास को निर्देशित किया गया। अगली जानकारी है, कल ही लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील अंतर्गत प्राप्त 29 अपील आवेदनों पर जिला पदाधिकारी रोहतास द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकार के रूप में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी रोहतास, निदेशक DRDA, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी, प्रभारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम, भूमि सुधार उप समाहर्ता सासाराम, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सासाराम दो कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल डेहरी उपस्थित रहे। लोक प्राधिकार द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में सुनवाई की गई तथा उपस्थित पक्षों को विस्तार से सुना गया।

कल ही जिला उद्योग केंद्र सासाराम द्वारा HOPT के सहायोजन में आयोजित ग्लोबल ऑपरेशन इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव 2026 का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उद्योग, निर्यात, बैंकिंग एवं निवेश क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, उद्यमियों, शिल्पकारों, बुनकरों तथा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के शिल्पकारों, हस्तशिल्प उत्पादकों, वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार से जोड़ना तथा उन्हें निर्यात के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों से अवगत कराना था। कार्यक्रम का आयोजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स EPCH के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरेंद्र कुमार मांझी, राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने अपने संबोधन में निर्यात क्षेत्र की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में निर्यात ऐसा क्षेत्र है जो उद्यमियों को सर्वाधिक प्रतिफल प्रदान करने की क्षमता रखता है। उन्होंने स्थानीय उद्योगों एवं उद्यमियों से वैश्विक बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। तो आइए अब सुन लेते हैं कार्यक्रम में एक गीत, जिसे हमने लिया है।

फिल्म फकीरा से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत हैं इंद्रजीत सिंह तुलसी का और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं, इसी के साथ संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास संपन्न होता है।

FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। शाम के 7:25 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल आकाशवाणी के पटना केंद्र से, जिसे हम अपने केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा लाइए 3,000।
5: क्यों भाई?
4: मेरी पॉकेट मनी।
5: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
4: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
5: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
4: अपना मोबाइल लाओ।
5: ले ले।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
9: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
8: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों के मुकाबले भारतीय घरों में एलपीजी सस्ती मिल रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख कल। 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 13 जून को नई दिल्ली में होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो वाले सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपये की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी कीमत 1011 रुपये से बढ़कर 1040 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपये से बढ़कर 386 रुपये हो गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। श्री सरावगी ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत में गैस के दाम अनियंत्रित नहीं हुए हैं।
1: ऐसा नहीं है कि केवल जो है हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, ये वैश्विक स्थिति परिस्थिति है पूरे, लेकिन अन्य देशों के अनुपात में भारत में बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संपर्क है अन्य देशों से, ये हमारी वैश्विक नीति है, जिसके कारण अन्य देशों के अनुपात में बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि यह वैश्विक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि केवल देश में बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है और अन्य देशों में नहीं बढ़ रहा है।
0: इधर सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तारीख है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यक होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी घोषणा की है। वहीं प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद आलोक सिंह ने कहा कि वे संगठन को पूरी मजबूती से चलाएंगे।
3: देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो उन्होंने निर्वाहन दिया है उसको निष्ठापूर्वक हम लोग निर्वाहन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और पार्टी का भी संगठन का चुनाव हुआ, 22 लाख से ऊपर हम लोग के सक्रिय सदस्य बने, इसको और आगे लेके जाएंगे हम लोग।
0: इधर पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक और राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन 13 जून को नई दिल्ली में होगा। पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस महाधिवेशन के दौरान पार्टी के अगले राष्ट्रीय

0: अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न होगा।
1: हाँ, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी 13 जून को। उस दिन भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बिहार से भी और दूसरी जगह से लोग आएंगे, वहाँ भी कार्यक्रम होगा।
0: अग्निशमन विभाग ने राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने आज पटना के एक चर्चित निजी कोचिंग संस्थान की जांच की। जांच के दौरान संस्थान में आग से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं पाई गई। अग्निशमन विभाग के सहायक जिला फायर ऑफिसर अजय कुमार शर्मा ने कहा कि संस्थान को कमियों को ठीक करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।
2: जो भी कमियां पाई गई है उनको नोटिस निर्गत किया जाएगा और उनको टाइम दिया जाएगा इस सप्ताह के अंदर, जो एक सप्ताह के अंदर सारा जो फायर सिस्टम सेफ्टी सिस्टम कमियां पाई गई है जो उनको लगाना है, और उनके बाद यदि सारा सिस्टम लगा दे फिर उनको फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट उनको इशू किया जाएगा। फुलफिल यदि जो टाइम बॉन्ड उनको दिया जाएगा, टाइम बॉन्ड के अंदर यदि फुलफिल कर लेते हैं तो फिर कार्रवाई कोई सवाल ही नहीं होता है। सभी कोचिंग का जांच किया जा रहा है, सभी कोचिंग को ऑडिट किया जाएगा।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश पुनर्परीक्षा नीट 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप को लाइव कर दिया है। उम्मीदवार अब इस परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी एनटीए की वेबसाइट पर अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड डालकर देख सकते हैं। एनटीए ने कहा कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा को पेपर लीक की पुष्टि के बाद रद्द कर दिया गया था। अब नीट पुनर्परीक्षा का आयोजन 21 जून को देश भर में किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। श्री मोदी लंबे समय तक लगातार पीएम पद पर बने रहने वाले नेता बन जाएंगे। इस उपलब्धि के साथ नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 72 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। 10 जून को पीएम मोदी का कुल कार्यकाल 4,399 दिनों का हो जाएगा, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दायित्व को लगातार 4,398 दिनों तक संभाला था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल विकास को समर्पित रहा है।
6: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सबसे लंबा नेहरू जी से भी आगे रहा, लेकिन अंतर रहा। नेहरू जी के कार्यकाल में घोटालों का आरोप शुरू हो गया था। मोदी जी के 25 साल चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री रहते हुए कोई कह नहीं सकता कहीं एक दाग लगा हो। ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता ही नहीं बल्कि पारदर्शी तरीके से देश को आज यहाँ तक ले जाने का काम किया।
0: विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक कल नई दिल्ली में बुलाई गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि इस बैठक में 23 राजनीतिक दल शामिल होंगे। इधर एनडीए के घटक दलों ने इंडी गठबंधन की बैठक की आलोचना की है। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन में कोई एकता नहीं है।
7: इल्लो का गठबंधन जो है स्वार्थ का है और स्वार्थ के अलावे उसमें कुछ नहीं दिखता है।

0: जिनका जिनका स्वार्थ सधेगा वो बैठक में शरीक होंगे, बैठक को अच्छा कहेंगे, और जिनका जिनका स्वार्थ नहीं सधेगा उस बैठक को कहेंगे कि अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जो उन लोगों में आपस में गठबंधन है वो बिल्कुल स्वार्थ का गठबंधन है।
1: वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए बना है, इस गठबंधन को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है।
2: आपस में भगदड़ है उन लोगों में, सिर्फ उटअल है, भगदड़ मची हुई है, आपस में समन्वय नहीं है। और एनडीए तो एकजुट है, तो उनकी आपस की प्रतिद्वंदता है, आपस का सिर्फ उटअल है, वही जाने।
1: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय मुंगेर दौरे के क्रम में आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संघ के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर से आयोजित शिक्षा वर्ग में शामिल होंगे। विक्रमशिला सेतु पर निर्मित बेली ब्रिज से परिचालन आज से शुरू हो गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 3 मई की रात पुल का एक स्लैब टूटकर गिर जाने से इस पुल से आवागमन ठप हो गया था। पंकज कुमार गुप्ता ने एनटीपीसी कांटी के परियोजना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि परिचालन उत्कृष्टता और सुरक्षा के उत्तम मानकों को बनाए रखते हुए परियोजना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। एनटीपीसी कांटी परिवार ने श्री गुप्ता के सफल और प्रेरणादायी कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
3: दिनांक 8 जून राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
1: इधर मौसम विभाग ने बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिले के कुछ भागों में अगले 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव के समीप NH 120 पर आज 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र के तिलई गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब कारोबारियों ने हमले में 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने हमले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइकिल ऑन संडे अभियान के तहत आज पटना के इनकम टैक्स चौराहा से पटना जू तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली को पटना साहिब के विधायक रत्नेश कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों के मुकाबले भारतीय घरों में LPG सस्ती मिल रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख कल। 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 13 जून को नई दिल्ली में होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
4: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
5: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
4: अरे वही अपना 60 रुपया।
5: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
4: तो देख, 2 तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
5: और दूसरा?
4: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
5: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
4: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: इधर आइए, इधर
6: इधर

0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी पटना।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बेगूसराय जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
5: राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सबका सम्मान जीवन आसान के तहत बेगूसराय समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा, लोक सेवाओं तथा अन्य जनहित से जुड़े कुल 48 मामलों की सुनवाई की गई। जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक मामले का गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा मामलों का समयबद्ध एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। युवा एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बेगूसराय जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों की कई निजी कंपनियों ने भाग लिया और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार दिया। चयन प्रक्रिया के बाद कंपनियों द्वारा योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जिला निबंधन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस रोजगार मेले में साक्षात्कार के उपरांत 70 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार पाने का अवसर मिलता है और उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। इधर स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, नियमित व्यायाम के प्रति लोगों को जागरूकता करने तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को जिले भर में संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह 6 बजे गांधी स्टेडियम से साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। यह रैली गांधी स्टेडियम से निकलकर मेन रोड होते हुए जीडी कॉलेज मार्ग, हर हर महादेव चौक एवं ट्रैफिक चौक से होकर पुनः गांधी स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली में जिला प्रशासन के कई अधिकारी, युवा, छात्र छात्राएं तथा खेल से जुड़े युवाओं ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
6: लगभग 5 किलोमीटर की साइकिल रैली की है और यह दिखाने के लोग जागरूक करने के लिए कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी प्लस ईंधन बचाने के लिए भी हमें साइकिल का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचता है। इसलिए हम लोग छोटे मोटे कार्यों के लिए या छोटे मोटे लघु कल्याणों के लिए अगर हम लोग साइकिल का उपयोग करें तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी और सरकार के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा।
5: भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए बेगूसराय के सदर अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के बेहतर उपचार एवं त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष लू वार्ड की स्थापना की गई है। अस्पताल प्रशासन द्वारा 10 बेड का यह अलग वार्ड तैयार किया गया है जिसमें लू से प्रभावित मरीजों के लिए आवश्यक सभी प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसमें ORS, IV फ्लू, आवश्यक दवाइयां तथा आपातकालीन उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि मरीज को तुरंत एवं प्रभावी उपचार मिल सके। इसके लिए साथ ही मरीजों की सतत देखभाल एवं उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए एक विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया है। यह टीम लगातार मरीजों की स्थिति पर नजर रखेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है ताकि लू से प्रभावित मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके और किसी भी प्रकार की

0: स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। बीते दिनों जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में मटिहानी प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय नया गांव सिंहपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जागरूकता रैली के साथ हुई, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान तंबाकू सेवन और धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। अंत में सभी उपस्थित लोगों को तंबाकू एवं धूम्रपान से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। आईएमए बेगूसराय के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए युवाओं को नशा मुक्त जीवन शैली अपनानी होगी। बेगूसराय जिले में पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला प्रशासन की ओर से बालिका फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे बेगूसराय जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
2: आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आपके द्वारा फरमाइश किए गए ईमेल संदेश पर आधारित कार्यक्रम ई मनपसंद।

कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। गीतों का सफ़र आज आप तय करेंगे लाल बहादुर दुबे के साथ। तो आज सबसे पहले जो हम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके लिए फरमाइश देख लिया जाए। ये संदेश आया है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा, आप सब हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और आप सब हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, उत्तम नगर दिल्ली से आप सब हैं बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका खुरवाल, भानु प्रकाश। ये संदेश प्राप्त हुआ है हमें नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप सब हैं सुहान जोशी और पायल जोशी। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है आकाशी सासाराम से सकीबा, आलिया, इब्राहिम, कमाल, मिराज, निसार और पंकज कुमार का। बागपत उत्तर प्रदेश से आप सब हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, शिक्षिका हैं आप, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, और कलेर बिहार से निकहत प्रवीण, सदफ आरजू, सादिया तस्नीम। तो आप सबकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं आप सबको लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म एक राज का खूबसूरत गीत। गीत है मजरूह का और संगीत चित्रगुप्त का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए आप सब ने संदेश भेजा है। ये संदेश प्राप्त हुआ है फुटानी चौक नरहन एस्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा नूतन मिश्रा गुंजन छोटू अमित सुमित अमन पराशर आराध्या और लल्लू पंडित का। ये संदेश है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गौहाड़कर सुमित गौहाड़कर कुमारी ध्वनि गौहाड़कर परी प्रिंस एकांश गौहाड़कर। ये संदेश है भाई आपने तो नाम ही नहीं लिखा है, आप लिख रहे हैं कि प्रसारक जी को दिल से आदाब व नमस्कार, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई, हमें निराश और नज़रअंदाज मत करना, मेरे मेल जरूर शामिल करना। भाई शामिल तो हम कर रहे हैं लेकिन आपने अपना नाम और पता नहीं लिखा है। चलिए अगला संदेश देखते हैं। ये संदेश प्राप्त हुआ है दत्रेंगी से, आप सब हैं भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। संबलपुर कांकेर से आप सब हैं फागू राम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव। तो चलिए आप सबकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं फिल्म खानदान का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं रवि।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कुदरत से। आवाज़ है लता मंगेशकर की। मजरूह के गीत को संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले आप सभी श्रोता हैं नेपा नगर मध्य प्रदेश से। आप सब हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। ये संदेश प्राप्त हुआ है गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राज किशोर सिंह, बड़क सिंह चौहान और आप सब हैं ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोती माला गुप्ता, लाल बिहारी सिंह, बीरा सिंह। यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी का। और यह संदेश है गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद और जी एसएम जावेद का ही, और आपने दो बार एसएम जावेद लिख दिया है। और ये संदेश प्राप्त हुआ है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी का। सिकंदरा राव से आप सब हैं मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। तो आइए आप सबकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं फिल्म कुदरत का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप अपनी पसंद का गीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम है ई मन पसंद। यदि आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं, जो कि नए श्रोता हैं हमारे, तो ईमेल संदेश के माध्यम से आप हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisasaram akashvanisasaram@gmail.com। और हाँ, ध्यान रखें, अपराह्न 1 बजे से संध्या 5 बजे के बीच भेजे गए ईमेल संदेश को ही हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। साथ ही आपसे एक निवेदन भी करते हैं, आप सबकी हमेशा शिकायत रहती है कि हमारे संदेश शामिल नहीं किए जाते हैं या फिर हमारी पसंद के गीत नहीं सुनवाए जाते हैं। तो आप सबसे हम कहना चाहेंगे कि देखिए, बहुत ज़्यादा संदेश आप सबके आते हैं, तो एक दिन में सारे संदेश शामिल होना संभव भी नहीं है कि एक कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें। लेकिन ये विश्वास रखिए कि आज अगर आपके संदेश शामिल नहीं होते हैं तो निश्चित ही अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होंगे। और साथ ही आपसे एक अनुरोध ये भी है कि आप कम से कम 2 या 3 फिल्मों के गीत ज़रूर भेजें, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे लाइब्रेरी में अगर वो गीत शामिल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो हम वह नहीं सुनवा पाते हैं। आपके जो संदेश हैं, आपका नाम हम दूसरे गीत के साथ शामिल कर लेते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, कम से कम 2 या 3 गीतों की फरमाइश आप अवश्य करें, जिससे हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा सकें। चलिए अब देखते हैं अगले गीत के लिए फरमाइश करने वाले आप सब श्रोताओं के नाम। आप हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंदु भूषण संस्कृति और पौरुष। रामगढ़ कैंट से आप हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। और ये संदेश है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सब हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। ये संदेश है नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई शेख, चांद फारूक फूलवाले, सईद खलील, मुबीन भाई और मोहम्मद यशीन। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर।

विजया लक्ष्मी सामनकर, राजेश राकेश और रिश्ता का। और यह संदेश भेजने वाले आप सभी श्रोता हैं, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड से आप हैं हाजी इसहाक लोला मानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी और हाजी अयूब शेरी। तो आइए, आप सबकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आया सावन झूम के का यह खूबसूरत गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, ई मनपसंद कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नील कमल से। आवाज़ें हैं, क्षमा कीजिएगा, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले आप सभी श्रोता हैं ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांत कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया और प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, साथ ही समस्त कठेरिया परिवार। करणवीर हाउस भूचो कैंचियाँ बठिंडा पंजाब से प्रेमजीत सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू एकम, दमन और अभिजोत। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। गांव नथाना पंजाब से आप सब हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल ठाकुर। यह संदेश है राजनगर कांति निकेतन से शारदा गुप्ता, कुसुम गुप्ता, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रूपा इलाहाबादी का। तो आइए, आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म नील कमल का गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत है रवि का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ई मनपसंद कार्यक्रम। आपके द्वारा ईमेल संदेश पर आधारित एक कार्यक्रम है। तो आइए अगली गीत के लिए देखते हैं फरमाइश आप सब में से किन श्रोताओं ने किया है। आप हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। आपने तो करीब 6-7 गीत की लिस्ट ही भेज दी है। हम कहते हैं कि आप 2 या 3 ही गीत की लिस्ट भेजें, लेकिन इसमें से एक गीत हम आपको आज सुनवा रहे हैं। इसके अलावा ये संदेश प्राप्त हुआ है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से आप सब हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। और शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है नगर पंचायत दिनारा से। आप सब हैं जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा,

श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर, अपने शायद गलत लिखा है मधेश्वर के जगह, या हो सकता है मदनेश्वर नाम हो, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीता मुनि देवी, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे का संदेश है। यह संदेश प्राप्त हुआ है ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ का। और ये संदेश है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री का। तो आइए आप सबकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं फिल्म बैराग का एक गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में एक गीत। फिल्म है धर्मात्मा, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले आप सभी श्रोता हैं। आप हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का। ये संदेश प्राप्त हुआ है कुआथ बिहार से शेख जफर हसन नरगिस जफर, क्षमा कीजिएगा, कुआथ बिहार से आप समय शेख जफर हसन नरगिस। और ये संदेश प्राप्त हुआ है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आप सब हैं बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, ये संदेश है दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। गम्हरिया जमशेदपुर से आप सब हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल का। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहाड़कर, निर्मला नुहाड़कर, विशाल नुहाड़कर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेरकर। यह संदेश प्राप्त हुआ है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर का। और यह संदेश है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्ना माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर का। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म धर्मात्मा का यह गीत किशोर कुमार की आवाज़ है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आपके द्वारा फरमाइश किए गए ईमेल संदेश पर आधारित कार्यक्रम ही मनपसंद संपन्न होता है। गीतों का सफर आज आपने तय किया लाल बहादुर दुबे के साथ। कार्यक्रम से अब हमें अनुमति दें। कल पुनः आप सब हमारे साथ होंगे इसी कार्यक्रम में और समय भी यही होगा। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपके द्वारा फरमाइश किए गए ईमेल संदेश पर आधारित कार्यक्रम ई मनपसंद। आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। शाम के 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या, जिसे हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: और अब से कुछ क्षण बाद यानी अब आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451

0: 51 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9

0: अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता।

0: सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर

0: ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने एक एक सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया च्वालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आप हमें सुन रहे हैं। रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक धारा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं टुक्कू पाठक की आवाज़ में एक देवी गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं लोक धारा के अंतर्गत कुछ भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं केशरी नंदन भगत और साथियों की आवाज़ में एक पूर्वी गीत।

श्रोताओं, केसरी नंदन भगत और साथियों के गाए इसी पूर्वी गीत के साथ लोकगीत भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महफिल, तो इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाते हैं गुलाम अली की आवाज़ में यह गज़ल।

गुलाम अली की आवाज़ में आपने सुना यह गज़ल, रचना संत दर्शन सिंह की थी और संगीत गुलाम अली का था। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन के गाए यह गज़ल, रचना हसन इमाम की है और संगीत है ललित सेन का।

श्रोताओं, मेहंदी हसन के गाए इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम महफिल संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार, जिसका अनुप्रसारण हमारे केंद्र से किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली

0: किरण फूटती राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने रहे हैं।

अमृता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सोफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर यह पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहां परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई

विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर वो नजर आने लगी। पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आई और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब के बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर उन पर गई।

जिसके बाद आई राजकुमार संतोषी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003 कैन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थीं। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना। और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था ये गाना।

जाने माने निर्देशक मिलन लुथरिया ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।

साल 2005 में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006 एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की ऑर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इवल हियर नो इवल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और अमृता राव थीं।

0: यहाँ तक आते आते अमृता राव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर।
1: भीनी भीनी में।

0: अमृता राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आईं। 2009 में हरमन बवेजा के साथ वो नजर आईं फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अक्षय खन्ना।
1: चल 9 बजे तुम

साल 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

के तौर पर भूमिका निभाई, जैसे हे बेबी, लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आई सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आई अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीनाताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह किया है।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार। आकाशवाणी सासाराम केंद्र का प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज तथा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। आइए कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवा रहे हैं मल्हार एल्बम में टाइटल गीत। आवाज़ें हैं ममे खान और मनीषा ए अग्रवाल की।

अगला गीत साधना सगम और आजम अली मुकरम की आवाज़ों में है, एल्बम है ठुकरा कर, और इसका टाइटल गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आइए अब सुनते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में, एल्बम है ओ आसमान वाले और यह टाइटल सॉन्ग भी है।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव को, एल्बम है बरसात हो जाए।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

आंखें फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गीत साहिर का था और संगीतकार थे रवि। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, फिल्म है मदारी, गीतकार फारूक कैसर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। गीत शैलेंद्र की है, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और इसे हमने लिया है फिल्म अप्रैल फूल से।

चित्रपट तराने का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे हमने लिया है 1972 की फिल्म गोरा और काला से।

कार्यक्रम चित्रपट तराने में आप सुन रहे हैं कुछ हिंदी फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत जिसे हमने लिया है, फिल्म है जब जब फूल खिले। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म थी जब जब फूल खिले। इसी गीत के साथ हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने संपन्न होता है। प्रस्तुति थी संतोष कुमार की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं आकाशवाणी सासाराम से कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों तथा मौसम के बारे में।

कल प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। 8:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत और प्रातः 8:20 पर आप सुनते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी।

हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका आप सुन सकते हैं सुबह 9:10 पर, और हमारा स्वास्थ्य यह कार्यक्रम प्रसारित होगा पूर्वाह्न 10:05 पर। लोक माधुरी भोजपुरी एल्बम लोक गीतों पर आधारित यह कार्यक्रम आप सुनेंगे पूर्वाह्न 10:30 पर, और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसधार आप सुनेंगे पूर्वाह्न 10:45 पर।

संध्याकालीन प्रसारण सभा में भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:10 पर, और महिला भवनों का कार्यक्रम आप सुनेंगे घर आंगन 5:30 पर। 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। गांव घर ग्रामीण श्रोताओं का यह कार्यक्रम प्रसारित होगा 6:10 पर। सांझ गीत भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर।

और ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:50 से। लोकधारा भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 9:00। वंदगी कार्यक्रम, इसमें आप कुछ कव्वाली सुनते हैं रात्रि 9:15 पर। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम होगा रसरंग रात्रि 10:00। और चित्रपट तराने, आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रात्रि 10:30 पर।

श्रोताओं, ये था हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। अब जान लें मौसम के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी 8 जून को रोहतास और कैमूर में तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ज़िलों में बादल छाए रहने तथा कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने तथा बिजली गिरने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये थी मौसम की जानकारी। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार और तत्पश्चात अंग्रेजी समाचार। इसे हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगी ओनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिमपोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $9 अरब की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।